हुण सुन के मैनू परम गत होएगी, मेरी ये जन्म सफल होएगा। एक दिन आना है और जो कबाड़ खोल देना, मेरी ये तीसरी अख खोलो ये भी खुल जानी है, ये सैसरा चक्कर खोलो ये भी खुल जाना, ये सुषमनी नाड़ी खोलो ये भी खुल जानी है। ये भोले पाच बड़ी सोहनी कबीर साहब ने बात कही है अपनी बाणी च, वो कहिंदे ने रब नूं ढूंढिया नहीं लभ सकदे तुसी, उहदी कृपा हुंदी है वह मिलदा है। वह किदां कहो कबीर भगत कर पाया, भगती करनी पैंदी, भोले पाए मिले रघुराया, भोले पा च रहना पैंदा, भोले भाव च चलाकियां चतराइयां नहीं, भोलिया पा महाराज जी तुही मैनू मिलना है, मैनू तो रस्ता ही नहीं पता मैं कित्थे जावां, मैनू तो टिकाणा ही नहीं पता मैं कित्थे जावां कित्थे मिलां।

आवाज मारो मारा इन आ जाओ प्रभु, अही उड़ीक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तेरी यादा आ रही ने, राती सोने हैं। तू ही वेखो सारे, आप बताओ मुझे, आप सब लोग इतना घूमते हो, इतना खाते पीते हो, सब जगह जाते हो, कभी कभी किसी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी शहर जाते हो, कभी घूमते हो फिरते हो, जहाजों की सैर करते हो, नए नए कपड़े खरीदते हो, शादियों ब्याहों में जाते हो, फिर भी आपका मन उदास है। पूछो क्यों मन उदास है आपका? मन तो खुश होना चाहिए था। क्यों उदास है मन? पति आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं, फिर भी आपका मन उदास है। क्यों उदास मन? क्यों अंदरों रोने वाला मन है, रोने जैसा मन है? क्यों? वो बिछड़िया हुआ, बहुत जन्म बिछड़े थे मां तो नहीं, हे प्रभु बिछड़े हो तू,

करने वास्ते दाता तो ही मैंने अपने चरणों च बुला लिया, मुझे मिलने के लिए मेरी औकात क्या है मैं तुमसे मिल सकूं प्रभु, ये तेरी कृपा है वड्याई, कौन आनक सब तेरी वड्याई, मैनू कौन जानता, ये तू ही मैनू बुलाया, संगत बख्शिश की, कहिंदे ने संगत विच रब मिलदा, जिहड़े बंदे दी रोज संगत होण लग पैंदी है उहनूं बार बार संगत मिलदी है ओ इन्ना वडभागी जीव बन जांदा, एक दिन ओ परमात्मा नूं जाके मिल लैंदा। इदां ही रब नूं सारी दुनिया मिली है, वड्डे वड्डे पैगंबर नबी अवतार पहलां उन्होंने लोकां ने संगतां कीतियां, फिर एक दिन परमात्मा दे विच विचर गए। पुछो ते सही, इतिहास ते खोल के वेखो, कोई होर तरीका ही नहीं परमात्मा नूं मिलन दा।

कोई नहीं बिरथा जा सकता, मालो माल करके भेजना मेरे महाराज ने। तुम जो घर जाना तो घर भर जाने रहमत नाल, क्यों तुम मेरे गुरु की शरण में बैठे हो, मेरे गुरु ने तो दृष्टि पा के मालो माल कर देना है।

नहीं पढ़ते कई बार वो भी मान मिलेगा सुनने पढ़न तो भी चंगा सुनना है। सुनिए लागे सहज ध्यान ध्यान लगन लग पे अख बंद करोगे रब न जुड़ जोगे सुनन नाल। हुण सुन ही रहे हो तुसी ते जुड़े कि नहीं जुड़े ध्यान लगन लग पे क्योंकि रब दीआं गल्लां हो रहीआं जिथे रब दीआं गल्लां होणा ते रब आ जांदा फिर अपने नाल जोड़ लैंदा। सुनिए लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास सुनन नाल दुख मुकदे ने पाप भी मुकदे ने। किन्नू सुनना है किन्नू सुनना है उस पार ब्रह्म बारे जिथे ओदी गल हो रही होवे जिथे रब की कथा हो रही होवे जिथे रब की गलबात हो रही होवे उथे सुनना है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की मेरे हरी की कोई गलत करे

0: जो संगत विच मिलता किते नहीं मिलता।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

ऐसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

मेरे नाल नाल जपो बस सारे बोलो और सुनो मी देखना आज तुसी बोल के बाणी नू नाल अपने कन्ना नाल सुनो मैं की कह रहा वो बाणी अंदर दाखल हुंदी कि नहीं हुंदी देखना मेरा एक अर्ज है मेरी बेनती।

शब्द वरते हैं महाराज ने, सखी कौन है सड़िया रूहा, असी सारे स्त्री हैं, जग में एक पुरख है बाकी सगले नार। पानी दे विच जिथे सखी वक अखर आंदा, मित्र आंदा, दोस्त आंदा, सखी का मतलब है असी सारिया रूहां, रूहां की गल्लां हो रही ने, ये रूहां नूं जाके जो मिलेगा चंगियां रूहां दे विच जाके बैठेगा, उत्थे जाके की करना, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, उत्थे गुण गा मेरे परमात्मा, रब दे गुण गाओ, जदों रूहां ना रूहां मिलन उत्थे कख ना बोलो, सिर्फ रब दीआं गल्लां करो, जे नहीं आउंदियां कन्न करके सुन लवो, जिहड़े करदे ने उहनां दीआं गल्लां सुन के आ जावो, उहदे विच वी भला हो जाएगा सर।

दर्शना दे नाल मन शांत होएगा, शरीर शांत होएगा और कुछ नहीं। हे प्रभु दर्शन दवो, दर्शन दवो प्रभु, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात रखी न्याई, रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जी। तेरे दर्शना तो बिना गुजारा नहीं होना, दर्शन दवो गल ही तां बननी, ते दर्शन कदी ना कदी दवेगा। अज भुख पैदा करांगे कल वो भुख पूरी होवेगी, साचे नाम की लगे भुख। फिर महाराज जी कहते ने साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। एहो जा नाम है, बस एक बार वस गया सारिया भुखा शांत हो गई, सब भुखा भी मिट गई।

आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज़ हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। जी हाँ, आज स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक गेस्ट मेरे साथ जुड़ रही है। तो चलिए मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता। मेरे साथ जुड़ रही है मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2017 का खिताब आपको मिला है और इम्प्रेस यूनिवर्स 2018 और उसके बाद 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब आपको मिला है और आप पेशे से डॉक्टर चेतना अग्रवाल नाम है मैम का। और तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।
0: कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं स्टूडियो में आकर?
1: ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच शारदा यूनिवर्सिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा अनुभव रह रहा है ये और बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल।
0: मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी शुरुआत रही पेशे से? आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एनेस्थियोलॉजिस्ट, करेक्ट बोला मैंने आपके आई थिंक, और उसके बाद ये फील्ड, इन दोनों को किस तरीके से आपने बैलेंस करके रखा है?
1: देखिए, ताज हमने, हर लड़की का शौक होता है कि उसके सर पे एक ताज सजे
0: जी,
1: और मेरा भी ऐसा ही ख्वाब था। हम लोग जब भी टीवी पर मिस वर्ल्ड मिसेस वर्ल्ड देखते थे, मिस यूनिवर्स मिसेस यूनिवर्स देखते थे, तो अपना भी मन करता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिले कि ये ताज हमारे सर पर भी चमके। तो यही एक ख्वाहिश थी, यही एक तमन्ना थी, लेकिन शुरू में ये नसीब नहीं हुआ। पर हाँ, जब मौका मिला तो मौका हमने हाथ से जाने नहीं दिया। और जैसे ही पहला मौका मिला 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017, जो कि उदयपुर में हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर मुझे मिसेस गुजरात का टाइटल मिला था एंड मिसेस इंटेलिजेंट का सब टाइटल मिला था
0: जी।
1: फिर बात करते हैं 2018 की, तो एम्प्रेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था। उसमें भी मैं सिटी एम्प्रेस, स्टेट एम्प्रेस रही थी, कंट्री फाइनलिस्ट रही थी और वुमेन ऑफ ऑनर अवार्ड भी मुझे मिला गया था गोवा में। और फिर 2019 में मिसेस यूनिवर्स, जो मिसेस कैटेगरी में सबसे ऊंचा
0: खिताब
1: है बोलते हैं, वो हुआ था चाइना में ग्वांगजू में
0: जी।
1: तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एज मिसेस यूनिवर्स मिडिल एशिया 2019 और वहां पे मिसेस काइंडनेस का सबटाइटल भी मिला था।
0: ग्रेट। घर से कितना आपको सपोर्ट मिला?
1: घर से पूरा सपोर्ट मिला है इसमें।
0: अच्छा, तो ये जो शुरुआत रही है, यूं कहें कि बचपन से आपके दिल दिमाग में रहा है कि मुझे भी इस फील्ड में आना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है।
1: फैशन शोज में पार्टिसिपेट किया है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर था।
0: ओके, ग्रेट। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड डॉक्टर चेतना अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, जो कि इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी और भी कुछ खास आना बाकी है, आप कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना अग्रवाल हैं, साथ ही साथ कई खिताब इनके नाम है, जैसे कि 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, 2018 में एम्प्रेस यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, और वहीं 2019 में मिसेस यूनिवर्स का खिताब भी आपके सर है, सर माथे है। ये जो ख्वाब आपने देखा, बचपन का ही ख्वाब था या जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ख्वाब परवान चढ़ता गया?
1: बचपन से ही ख्वाहिश थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ती गई ये ख्वाहिश। पर मिस कैटेगरी में कभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो मिसेस कैटेगरी में मैंने अपना ये सपना सच किया।
0: ओ ग्रेट ग्रेट, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी डॉक्टर?
1: मेहनत इसमें काफी रहती है। लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, स्टेज पे आके बस हम ताज जीत लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारी पूरी ग्रूमिंग होती है, हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, हमको हमारे बात करने का तरीका सीखना पड़ता है, हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी रैंप वॉक ट्रेनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर राउंड्स की ट्रेनिंग होती है, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। तो काफी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारा टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे हमको डांस करना है या कोई भी हमको प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी तैयारी होती है। तो काफी इसमें ज्यादा
0: मेहनत है,
1: बहुत मेहनत लगती है। और हमको एक प्रेजेंटेशन भी करना होता है, जैसे मिसेस यूनिवर्स 2019 में डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने एक प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें मैंने डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स के जरिए अपना पूरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो इसमें काफी हमको तैयारी करनी पड़ती है।
0: जी जी जी, ये जो तैयारी है, ये तैयारी कौन कराता है? आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ती है या आप जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ की टीम आपको तैयार करती है?
1: कंपटीशन की टीम भी हमको तैयार करती है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं हमारे वहाँ पे। पर कॉम्पिटिशन में जाने से पहले, पेजेंट में जाने से पहले हमको खुद की तैयारी करनी पड़ती है टू बी प्रेजेंटेबल इन दी कॉम्पिटिशन।
0: ग्रेट, मैं सॉरी प्लीज कंटिन्यू करिए।
1: तो हमारे जो भी हम ट्रेनर्स यहाँ पे लेते हैं, ग्रूमर्स होते हैं हमारे, तो उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्लस अगर जो हमारे टैलेंट राउंड का जैसे मैंने बात की थी तो उसके लिए भी हम तैयारी करके ही जाते हैं यहाँ से।
0: ओ ग्रेट,
1: प्लस हमारे डिजाइनर्स होते हैं जो हमारे ड्रेसेस डिजाइन करते हैं।
0: ओके, डॉक्टर जहन में ये भी सवाल आता है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसे इलाके से आ रहा या आ रही है, अपने सपने को साकार करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में एक ये बात भी आ जाती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एक बात होती ही होती है, तो इस मामले में या यूं कहें खुलकर आप बताएं कि वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है, वो कैसे आपकी तरह कोई मिस इंडिया बन सकता है या मिस इंडिया का जो खिताब है उसके सर माथे जा सकता है।
1: ये अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल के जो पेजेंट्स हैं वो बहुत ओपन अप हो गए हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात कर सके तो आपको खिताब मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा जो भी आपकी, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड दे सकते हैं। वो आपके सब जवाबों को एक्सेप्ट करेंगे। और ट्रांसलेटर्स भी होते हैं जो आपकी भाषा को इंग्लिश में या हिंदी में जो ज्यूरी समझ सके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें बोल सकते हैं। और दूसरा है कि ट्रेनिंग तो हम सबको लेके ही जानी पड़ती है।
0: जी जी,
1: और वहाँ पे भी वो हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं।
0: क्या कोई रुपए पैसे की अगर हम बात करें तो क्या कोई रुपया पैसा भी आगे चल के खर्च करना पड़ता है?
1: हाँ जी, इसमें रुपया पैसा तो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ड्रेसेस होती हैं, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आप जब पेजेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, तो हमको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है अपने लकी, पर हाँ इसमें थोड़ा खर्चा तो रहता ही है। आपकी तैयारी होनी चाहिए।
0: क्या बात है, यानी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाकर रखिए, चाहे वो वॉकिंग की बात हो, टॉकिंग की बात हो, और जिस तरीके से डॉक्टर चेतना अग्रवाल हमें बता रही हैं कि इन इन बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे खास बात यह कि इन्होंने एक सपना देखा और सपने को इन्होंने साकार किया। अब वो चाहे वो मिसेज यूनिवर्स का खिताब क्यों ना हो, लेकिन वो खिताब बचपन से दिल दिमाग में कहीं घूम रहा था कि ये सपने को मुझे साकार करना है। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आप पेशे से एनेस्थियोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं कि बेहोश करने वाली डॉक्टर है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि अभी भी हम बेहोश हो ही रहे बिना इंजेक्शन के दवा के। तो इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा जरूर, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप गाना चाहती हो, गुनगुनाना चाहती हो, हमारे लिसनर्स को सुनाना करना चाहती हूँ।
1: ए दिल है मुश्किल,
0: क्या बात है। सो ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।
2: तू

0: ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ बड़ी खूबसूरत डॉक्टर जुड़ी हुई है और क्या कहूं मैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर आपसे बात हो रही थी कि आप बेहोशी की डॉक्टर हैं, आपको देख के तो मुझे लगता है कि मरीज वैसे ही बेहोश हो जाते होंगे। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है।
1: थैंक यू।
0: ये जो डॉक्टरी का फील्ड है आपका और आप इस फील्ड में भी काम कर ही रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है किस तरीके से आप इसका तालमेल बैठा पाते हैं?
1: बैलेंस करना, यस इट इज थोड़ा मुश्किल चीज होती है हमारे लिए, लेकिन जब दिल में ख्वाब होता है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, तो अपने आप हम आपस में टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिवार को भी देखना होता है, हमको बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है और अपने ख्वाबों को भी सच करना होता है।
0: Excellent.
1: तो सब कहीं ना कहीं जैसे भी होता है हम टाइम सेट करके सब मैनेज करते रहते हैं।
0: वेरी गुड। यानी कि कहीं ना कहीं लिसनर्स अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो राहें वो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं, बस एक बार छोटा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए और जो आप चाह रहे हैं वो होता चला जाएगा। आप कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने फाइट भी किया, जैसे कि आप उसके
1: आपने जो ये बोला उसके बारे में मैं बोलना
0: चाहूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज।
1: मेरा एक मोटो जो हम बोलते हैं वो ये है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू। यानी जब आपको मिले मौका तो आप उसी समय अपनी मंजिल के रास्ते पर चल सकते हैं।
0: क्या बात है, इस बात को यूं कह सकते हैं जब भी मिले मौका मार दो चौका। बहुत खूब बहुत खूब। और आम भाषा में डॉक्टर कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये जरूरी है कि ख्वाबों को जिंदा रखना जरूरी है, उनको मरने मत दीजिए। आप एक जीता जागता उदाहरण है समाज के लिए, युवाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल आपको मिल ही जाएगी। कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, उसके आप विनर भी रही हैं। एज ए जूरी जब आप जाती हैं तो क्या क्या खूबी आप जो पार्टिसिपेंट वहां पर हैं क्या देखती हैं?
1: ज्यूरी बनके भी जाने का मौका मुझे मिला है कई पैजेंट्स में, तो वहाँ पे हम सबको बेसिकली उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन की फिजिकल ब्यूटी या वो बोल कैसे रहे हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, उनका टैलेंट राउंड कैसा है, उन्होंने इंटरव्यू कैसा दिया, ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस में वो कैसे रहे हमारे साथ, कितना अच्छा उन्होंने सहकार दिया, कितना अच्छा ट्रेन किया अपने आप को, तो सब कुछ हम इकट्ठा देख के ही हम पार्टिसिपेंट्स को जज करते हैं।
0: वेरी गुड। मुझे लगता है कि इस बात से जो हमारे लिसनर हैं, इन बातों को सुनना या समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। फाइनली एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिस पर्पस से आप यहाँ आई हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस कैंपस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और फाइनली एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को?
1: मैं ला ग्लोबल फाउंडेशन की ऑनर्ड एम्बेसडर रही हूँ 2020 से, जब ये कोविड हुआ था, शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले ही मैं इनकी ऑनर्ड एम्बेसडर बनी हूँ। और मुझे कहकर बेहद खुशी हो रही है कि जो मतलब कोविड टाइम्स में भी जब हम सोचते थे कुछ नहीं हो सकता है, तब भी ला ग्लोबल फाउंडेशन ने इतनी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स की हैं, जो यूएन के रिलेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेशन में होती हैं एंड काफी आगे तक इस फाउंडेशन को लेके गए हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनके पास आए हैं जिसके साथ में हम मीटिंग करते थे ऑनलाइन और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये थ्रू आउट। और उनके साथ हमने ब्रेस्ट अवेयरनेस का यहाँ पे एक पेजेंट किया था, क्राउन ग्लोबल पेजेंट अवार्ड्स किए थे अभी दिल्ली में, तो उसमें भी एज अ ग्रूमर मैं आई थी, एज रैंप वॉक कोरियोग्राफर भी आई थी, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सफर रहा है उनके साथ। और मैं इंडियन रिसोसिटेशन काउंसिल की जो ISA हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और हमारे मैं अपनी सिटी की सेक्रेटरी हूँ ISA वर्धा। और हमारे जो नेशनल फोरम्स हैं ISA आर्ट एंड लिटरेरी क्लब, ISA कल्चरल क्लब एंड ISA विजिल, उसकी

0: मैं कोऑर्डिनेटर हूँ।
1: ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक छोटा सा संदेश हमारे यूथ के लिए, हमारे उन गर्ल्स के लिए जो आपकी तरह इस खिताब को जीतना चाहती हैं, मिस यूनिवर्स का, मिसेज यूनिवर्स का या मिस इंडिया का।
0: जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखिए, चाहे जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पे लेके जाए, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, लेकिन अपने ख्वाबों को प्लीज बुझने मत दें, उनको हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि कब आपको मौका मिलेगा उन ख्वाबों को सच करने का ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन ख्वाब सच जरूर होते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं, इसलिए आप भी देखेंगे जरूर जिंदगी में कभी ना कभी, डेफिनेटली।
1: चलिए, मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मेरे भी जो ख्वाब हैं, जो सपना है, वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन जरूर साकार होगा। सो डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आपसे बात करके, आपसे मिलकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत एनर्जी मिली है, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि वो सपना जरूर साकार होगा, आपकी बातों से मुझे भी अपने आप में ऐसे लगने लगा है। सो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत सारा समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।
0: धन्यवाद आपका भी। एंड शारदा यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहूंगी कि मैंने बहुत पहले से मैं टीवी और न्यूज़पेपर में इनके एड्स देखती थी, और आज पहली बार जिंदगी में मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में आने का, और इतना बड़ा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सब बहुत सपोर्टिव है, ओवरऑल टीम सपोर्ट बहुत ही अच्छा है।
1: अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छा। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
0: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
1: ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस,
0: इतना कंफर्टेबल फील करके अच्छे से करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये होना बहुत जरूरी है ताकि हम जो बातें हैं वो खुलकर बात कर पाए।
0: बिल्कुल।
1: और आप जब जज होती हैं तो मैं समझता हूँ जो प्रतिभागी आपके सामने, अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक नया बंदा या बंदी है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा।
0: बिल्कुल भी।
1: तो डॉक्टर आपसे बात करके वाकई बेहद खुश हुई, मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच।
1: सो लिसनर्स, थैंक यू मैम। ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। एक्शन।

0: जो कहते हैं सच ये भी कहते हैं कि जान है तो जहान है ना। और जब जान की बात आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जब हेल्थ का जिक्र होता है तो सच बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की याद आती है कि डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर हमें गाइड करेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हेल्थ के संबंध में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जब आपको पता चले कि डॉक्टर वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, और साइड बाय साइड वो अपना एक जो प्रोफेशन है उसको भी कैरी कर रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात हो या लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूं कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पैकेज है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची वी रायजादा। सो डॉक्टर प्राची, आपका सुरुशाधा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: अभी दो और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत रही, बहुत अच्छी रही। आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस फाउंडेशन के, बहुत खुश मिजाज लोग हैं आप, और आपके चेहरे पर मुस्कान है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये जो मुस्कान का राज क्या है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, और किस तरीके से उसका जो दर्द है एक मरीज का वो फुर्र हो जाता है, दूर हो जाता है।
1: सर ये तो अभी तो मुझे लगता है हम अंदर से इतना ज्यादा खुश हैं, हेल्दी हैं और ब्लेस्ड हैं, इसीलिए हर समय हम खुश रहते हैं बेसिकली।
0: okay.
1: और हर मोमेंट को जीते हैं।
0: रियली नाइस। तो आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ से है, और किस तरीके से आपने अपने आप को इस फील्ड के लिए तैयार किया है जिस प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ आई हैं शारदा यूनिवर्सिटी में कैंपस में?
1: सर बेसिकली नेटिव मेरा है वाराणसी, बट क्योंकि मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में हुआ है
0: जी।
1: स्कूलिंग, एजुकेशन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग सब वहीं से होने के बाद यहाँ शादी हुई मेरी, तो मैं इधर आ गई। उसके बाद मैं अपने बेसिकली मेरा प्रोफेशन एचआर प्रोफेशन से हूँ मैं सिंस लास्ट 15 इयर्स, और इसके अलावा यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन था क्योंकि मेरे को लगता था जब तक फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने जो चीज अपने कॉर्पोरेट में नोटिस किया है वो ये है कि इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब्स में, इतना प्रेशर है, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सके। अगर हम इसको बैलेंस करके चलते हैं तो जो स्माइल की बात आप कर रहे हैं वो आराम से हो सकती है। सो मैंने उसके लिए टाइम निकाला, मैं मॉर्निंग 4 o'clock उठती हूँ डेली, मेडिटेशन करती
0: हूँ। कुमार को फॉलो करती है आप। ग्रेट, गुड जॉब डॉक्टर जी।
1: और मेडिटेशन करती हूँ डेली।
0: एक्सीलेंट।
1: और उसके बाद मैं रनिंग और साइकिलिंग के लिए अपने टाइम निकालती हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि आपने सुबह की बात बता दी कि पांव फटने से पहले आप जग जाते हैं। लेकिन आप सोते कितने बजे?
1: सर मैं 9:30 अपने बेड पे चली जाती। जी जी जी। और मैंने अपनी बेटी को भी इतना ही डिसिप्लिन रखा है। लोग कहते हैं बच्चों के साथ हम सो नहीं पाते, वो जागते रहते हैं, बट नहीं, शी इज वेरी डिसिप्लिन, वो भी हमारे साथ सो जाती है।
0: माँ पर गई है।
1: सर अगर ऐसा नहीं करें तो मॉर्निंग 4 o'clock नहीं
0: हो पाता। डॉक्टर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत रहा है कि समय से सोना समय से उठना, यही वजह है कि उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती थी। मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि अगर आप नींद खो रहे हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून आप खो रहे हैं। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपने आप को बैलेंस किया कि 9 बजे आप सो जाते हैं और 4 बजे खटिया छोड़ देते हैं, खटिया नहीं होगा सॉरी, बेड छोड़ देते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग लेट आवर्स में सोते हैं या जल्दी जग जाते हैं, नींद कम लेते हैं?
1: सर ये करने का रीजन ही एक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि कॉर्पोरेट में मैं देख रही हूँ इतना प्रेशर है, लोगों से नहीं हो पाता। एक टाइम था मैंने भी ये सारी चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी थी कि 1-1 बजे तक हम ऑफिस का काम लेके रात को बैठे हैं, मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। बट मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे अगर हम फोकस्ड हैं, हमारा मेंटल लेवल स्टेबल है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं। रात को ये जागना और स्पेसिफिक मोबाइल के साथ ये सब चीजों से अगर वो दूर रहेंगे और अपनी खुशी और हेल्थ दोनों मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, तो ये करना चाहिए एक बार वो प्रैक्टिस करके। क्योंकि हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अगर आप लोग हमें ऑनलाइन दिखते हैं इतने बजे के बाद तो आपको वो पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट डे, तो हम उनको भी कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे उस फील्ड में।
0: यानी कि आपकी खूबसूरती का जो राज है वो टाइम से सोना, टाइम से खाना, अपने आप को बैलेंस डाइट जो आप लेते हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। क्या कहना चाहते हैं हैं, जो जो नींद कम लेते हैं, जो दिक्कत परेशानी में घिरे हुए हैं, जो अवसाद से ग्रसित है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर कर रखें, किस तरीके से जिंदगी को वो खुशनुमा बनाकर रखें, एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से उनके लिए।
1: सर मुझे यही लगता है कि उनको जितना वो परेशान है, परेशानियों के बारे में सोच सोच के नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एटलीस्ट उनको 21 डेज, एक सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर मैं बहुत कभी परेशान होती हूँ, मैं सारी नेगेटिव थॉट्स राइट करती हूँ एक नोटबुक पे, फिर उसको फाड़ देती हूँ और बर्न कर देती हूँ बस, और उसको डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती हूँ। और आपको भी आप फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं। मेडिटेशन का रोल तो एक अलग होता ही, आप पॉजिटिव रहते हैं, बट ये करने से नेगेटिविटी जो उस टाइम पे जो आपको खाई जा रही है, वो आपकी थॉट निकल गई आपके माइंड से, तो आप नेक्स्ट पल कुछ और अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो करके देखिए। गाना गाना है, डांस करना है, कुछ भी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर प्राची, जब गाने का जिक्र हो ही गया है, तो बातों बातों में कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, जब आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, ये गाना गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को भी सुनाना चाहती हूँ।
1: सर स्ट्रेस तो टचवुड नहीं है मेरी लाइफ में, बट फिर भी अगर कभी अगर किसी को परेशानी है तो सिर्फ दो लाइन्स
0: जी प्लीज।
1: ये

0: खुदा बड़ा है।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और लिसनर्स, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर प्राची आपसे बात कर रही हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। जिंदगी वाकई बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। और अक्सर मैं भी खुद लाइनों को यहाँ जिक्र करता रहता हूँ कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। डॉक्टर, अदरवाइज तो लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन लेने का नहीं देने का। मेरा खुद का मानना ये कि ना आपको टेंशन लीजिए, ना किसी को दीजिए। जिंदगी को खूबसूरत बनाकर रखिए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहिए। और आके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई है, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। और इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई होप जब भी आपसे मुलाकात होगी, इधर कैंपस में आना होगा, तो जरूर आप हमारे रेडियो आएगा, जरूर हम आपसे फिर बात करेंगे।
0: थैंक यू सो मच सर, इतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू।
1: लिसनर्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनूं शारदा 90.8 FM। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार से मोहब्बत से गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय एंड टेक केयर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखे कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:09 हो चुके, 4 तारीख है यानी कि 4 अगस्त 2026। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा में आप और हम पाए जाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ग्रेटर नोएडा की हम बात ना करें। तो ग्रेटर नोएडा में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, और हवा में जो नमी का लेवल है वो रहेगा 52% दर्ज किया गया है, और जिससे ये हो सकता है कि उमस महसूस हो आपको। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो चुका है, और झमाझम बारिश की वजह से सच बात तो ये कि मौसम विभाग ने पूरे इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहेगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम के लिए येलो वॉच जारी है, और दिन भर मध्यम बारिश के दौर और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। ऑन रोड जब आप चलते हैं तो दिक्कतें, परेशानियां बहुत ज्यादा आपको फेस करनी पड़ती हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि समय से पहले निकलेंगे तो गंतव्य स्थान अर्थात डेस्टिनेशन पॉइंट पर समय से पहुंच पाएंगे। कांवड़ यात्रा भी चल रही है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑडियो सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ 9:10 ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑडियो सुरुशादा 90.8 FM। दिल डिस्को करे, क्या बात है, हिमेश रेशमिया की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार, 20 मिनट हो चुके हैं, 4 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब बात निकल कर ये सामने आ रही है कि कुछ और बातें हैं, उनको जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग की वजह से जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उनको भी आप समझ लीजिएगा। बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है और ऐसे समय में हमें होल नजर नहीं आते, क्योंकि सच बात तो यह कि सीवर के ढक्कन कहीं खुले हैं, कहीं नाला है वगैरह वगैरह। तो आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में बिजली का जो करंट है वो पोल में, शटर में उतरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अब बारिश की वजह से कुछ जो रूट हैं, जो प्रभावित मार्ग हैं, उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ITU चौराहा, कनॉट प्लेस, जनपथ, मथुरा रोड, लुटियंस, दिल्ली की जो मेन सड़कें हैं वहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है और ट्रैफिक थोड़ा स्लो है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाईवे और अंडरपास यानी कि NH8 शंकर विहार इलाका, पांडव नगर अंडरपास और मुर्गा मंडी राउंड अप, इस तरीके से यहाँ के आसपास का जो एरिया है पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन दोनों शहरों के भी निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। और कांवड़ यात्रा की वजह से कहाँ डायवर्जन है, कहाँ कहाँ ब्रेक लगे हुए हैं और शासन प्रशासन कांवड़ यात्रा को सरल, सुगम, आसान बनाने के लिए मुस्तैद है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम रेडियो के माध्यम से आपको अप टू डेट रखें ताकि आपको आवन जावन में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। हाय तेरे नी करारा, ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, फ्रॉम द मूवी धुरंधर जो कि 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई, लेकिन गाना शाश्वत सचदेव की आवाज, दिलजीत दोसांझ की आवाज, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
2: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:29 हो चुके हैं। 4 तारीख है यानी कि अगस्त की 4th तारीख यानी कि 4 तारीख है कोई ना, और मंगलवार का दिन। बजरंग बली से यही दुआ यही प्रार्थना है कि सबका मंगल ही मंगल हो, कभी किसी का अमंगल ना हो। लेकिन अगर आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए उतावले हैं तो दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में बहुत सोच कर समझ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अदरवाइज दिक्कतें हमारे सामने बहुत पहाड़ का रूप धारण करके सामने आ जाएंगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करेगा, यानी कि जल भराव की स्थिति है तो वहां पर अपनी गाड़ी को मत उतारेगा। जल भराव की स्थिति है तो बहुत सोचकर समझकर आप आगे बढ़ेगा, क्योंकि गड्ढे नजर नहीं आते, सीवर के ढक्कन खुले हुए होते हैं और बारिश के मौसम में जो पोल है या शटर है कहीं पर भी करंट उतरने के चांसेस हो जाते हैं और जनधन हानि होती है। ऐसे समय में कांवड़ यात्रा भी चल रही है। कांवड़ यात्रा 2026 के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी, रूट डायवर्जन, इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। अपडेट्स ये सामने आ रही है कि 4 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2026 तक बेहद सख्त ट्रैफिक नियम और पाबंदियां लागू की गई हैं। हाईवे पूरी तरह से बंद है, यानी कि दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे के बारे में अगर आप सोच रहे हैं उधर जाना है तो मत जाएगा अभी, उसके बाद आप कहीं प्लान बना सकते हैं बाद में। यानी अपर गंगा कैनाल रोड को भी आम प्राइवेट गाड़ियों और वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहां से केवल कांवड़ियों और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए ही निकासी है। भारी वाहनों पर भी रोक लगाई गई है, यानी कि भारी मालवाहक जो वाहन है, जो व्हीकल है, रिंग रोड, वजीराबाद, सिंधु बॉर्डर और बुराड़ी चौक और मधुबन चौक से डायवर्ट किया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर के जो संभावित डायवर्जन रूट है, जैसे कि NH44, यहां की अगर मैं बात करूं तो सिंघु बॉर्डर से बुद्धपुर नाला की तरफ जाने वाले वाहनों को UER 2 और नरेला बवाना रोड की तरफ मोड़ा जा रहा है। आउटर रिंग रोड यानी आउटर रिंग रोड सर्विस लेन की का जो ट्रैफिक मुकंदपुर, भलसवा कट और आजादपुर चौक से डाइवर्टेड है और वैकल्पिक रास्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जाने वाले लोग NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई है ब्यूटिफुल ट्रैक, जानकारी के बाद गाने तो बनते ना। दिलजीत दोसांझ की आवाज, दिल जीत ही लेते पाजी। क्रू फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक नैना, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ, मंडे टू सैटरडे 9 से 10 लाइव। मैं होता हूँ गगन आपके साथ। आए

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान,
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अजी, इसका सवाल तो मतलब जवाब तो घर वाले दे सकते हैं।
1: हाँ, घर वाले दे सकते हैं। और मतलब ऐसा पूछा जाता है कि आपने क्या खाया है और उस वक्त कैसा माहौल था।
0: हाँ, हंसी मजाक तक ही सीमित रखना।
1: हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:38 हो चुके हैं। 4 तारीख है यानी कि 4 अगस्त, मंगलवार का दिन। और हमेशा की तरह बजरंग बली से यही दुआ, यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो, कभी किसी का अमंगल ना हो। और यही वजह कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमेशा मैं आपको अप टू डेट रखता हूँ कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर की बात मैं करने जा रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमने सुना, और इस बात को जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कि जब भी महीने की पहली तारीख आती है उस दौरान कुछ परिवर्तन होते हैं, वो एलपीजी गैस सिलेंडर पर भी लागू होता है। जैसे कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि 200 रुपए घटा दी गए। अब जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर कोई रुपए नहीं घटाए गए। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के देश में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी पाए गए हैं, और इसके तहत हर साल चार एलपीजी सिलेंडर की जो रिफिल पर 300 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है। और इससे पहले 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते हैं, जिसका नियम बीते जून महीने में ही बदल गया है। अब कहने का आशय सिर्फ मेरा यह है कि EKYC कराने के लिए कहा जा रहा है, जो कि 16 अगस्त इसकी डेट निर्धारित की गई है। अगर आप समय से इसको करा लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको योजना का, उज्ज्वला योजना का लाभ आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। इसके बारे में जो जानकारी गूगल के माध्यम से ले सकते हैं, या आपके घर में जो डिलीवरी बॉय आता है सिलेंडर लेकर जो आता है, उनसे भी आप मालूम हासिल कर सकते हैं, या गैस एजेंसी पर भी जाकर इसकी डिटेल ले सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, सिर्फ सुरशादा 90.8 एफएम पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:43 हो चुके हैं 4 अगस्त 2026 यानी कि मंगलवार का दिन। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती है, जिंदगी को जीने की बातें होती है। तमाम बातें इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार हम यहां से ऑन एयर होते हैं और हम रेडियो के अलावा यानी कि हम मैदान में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यही एक वजह कि सेहत सही लाभ का एक विशेष कार्यक्रम हमारे यहां से ऑन एयर हो रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप उसको सुन सकते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं 01204060205 पर यानी कि 120 40 60 205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in हमारा मेल आईडी है, इसके जरिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे वो आप के लिए खुले हुए हैं क्योंकि लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आवन जावन लोगों की फुटफॉल बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का दौर चल रहा है। एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको जानने को सीखने को समझने को मिलेंगे। प्लेसमेंट की बातें भी आपको पूछनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटी के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ आप अपनी क्वेरी के साथ आ रहे हैं और निश्चित तौर पर यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक कहते हैं ना मुतमईन होकर एक सेटिस्फैक्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं। तो शारदा विश्वविद्यालय यही कहता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑलवेज थ्रू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। रेस 2 का ब्यूटीफुल ट्रैक पहली नजर में, सच बात तो यह कि पहली नजर में कुछ कुछ तो होता है ना। मोनाली ठाकुर की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी गड्डी बुरी होशो आवाज में चलेगा। अगर आप ईयरफोन लगाकर सुन रहे हैं गाना तो उतनी ध्वनि रखिएगा ताकि आपकी जो कानों की सुनने की क्षमता उसको कोई नुकसान ना हो। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी मेरे यानी गगन के साथ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। आए हैं

सुई में सुई में तेरी हुई वेडिंग सॉन्ग, नीत ब्रदर्स, कनिका कपूर की आवाज, कुमार की बोल, सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। नौ बजकर 52 मिनट, 4 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन। बजरंगबली से यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो। श्रावण का महीना चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि भोले बाबा का पूजा का जो दौर है वो चारों ओर देखते ही बनता है। मुझे लगता है कि कोई भी आप काम करें, निश्चित तौर पर तन मन धन की शुद्धि होगी तो उसके बाद जो फल है वो आपको मिलेगा जरूर। आप महसूस करेंगे कि दिन आपका शांत गुजरेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आप अच्छा करेंगे। तो वो ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित मन को साथ लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। चलिए इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बॉलीवुड में क्या खास हो रहा है। एक खबर को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मुस्जिद यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूं धर्मेंद्र पाजी की। धर्मेंद्र पाजी कहा करते थे कि पाकिस्तान को वो अपनी मौसी कहा करते थे। सच बात तो ये कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का एक भाग था, लेकिन आज के समय में बंटवारा होने की वजह से पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा देश है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी बातें क्यों सामने आई, वजह यह कि बंटवारा का जब मैंने जिक्र किया है कि एक फिल्म आ रही है बंटवारा 1947, इसका प्रमोशन सनी देओल कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें, पुरानी यादों को ताजा किया जा रहा है। और इस फिल्म में करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं। और ये जो फिल्म है, निर्देशक जो है इस फिल्म के, राजकुमार संतोषी और सनी देओल का सालों बाद, कई सालों बाद एक यूं समझ लीजिए कि संगम हो रहा है, भेंट हो रही है, मिलन हो रहा है, जो कि लगभग 30 वर्षों के बाद फिर से एक साथ काम कर रहे हैं। और ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, तो इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे हैं। आने वाले इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम देखना चाहेंगे कि ये फिल्म क्या कमाल धमाल मचाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुरशाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
6: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
5: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
6: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
5: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
6: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
5: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
6: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
5: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
7: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
8: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
7: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
9: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में और बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको सेहतमंद तो रखती हैं बल्कि आपके लिए फायदेमंद भी होती हैं। क्यों आयुष
3: जी? बिल्कुल ठीक कहा शशि आपने। पिछले कई हफ्तों से हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था के बारे में। हमने अपनी कई बहनों, भाभियों और बहुओं से उनकी पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में अपनी देखभाल कैसे करें उस विषय में बात करी है।
2: बिल्कुल आयुष, तो अगर मैं संक्षिप्त रूप में अपने श्रोताओं को बताऊं तो पहले तिमाही में आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के चिकित्सा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाएं और सरकारी सेवाओं का लाभ पाएं, IFA और कैल्शियम की गोलियां खाएं। दूसरी तिमाही में बढ़िया पौष्टिक आहार का सेवन करें, जरूरी टीकाकरण करवाएं, आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाना ना भूलें। तीसरी तिमाही में गोलियों और पोषण के साथ साथ हल्का व्यायाम करें, रेगुलर चेकअप करवाएं, जरूरी टीकाकरण करवाएं और संस्थागत सुविधाओं में प्रसव करवाने की तैयारी करें। साथ ही 102 नंबर याद कर लें, क्योंकि प्रसव का वक्त आने पर यही नंबर डायल करना होगा अस्पताल तक पहुंचने की निशुल्क सुविधा का लाभ उठाने के लिए।
3: बिल्कुल सही बात कही आपने शशि, लेकिन एक बात तो आप बताना भूल ही गए। इकन भाभी ने हर एपिसोड में बताया था कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का खान पान आराम की जिम्मेदारी उसके अकेले की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, खास तौर पर गर्भवती महिला के पति की।
2: टीकन भाभी आप तो 100 साल जिएंगी। अरे अभी आपके बारे में हम बात कर रहे थे आयुष के साथ और देखे आपका नाम लिया और आप स्टूडियो में हाजिर भी हो गई, बड़ी अच्छी बात है आपकी।
4: भैया 100 साल की दुआ मत दो, एक स्वस्थ जीवन की दुआ दो। जरूरी है कि जितने भी वर्ष जिए स्वस्थ रहे तंदुरुस्त रहे।
2: बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी आपने, इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई हर सप्ताह लेकर आते हैं।
4: यह कार्यक्रम तो लोगों की जिंदगी में इतना बदलाव ला रहा है कि क्या बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं वह कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हैं, जिन्हें घर बैठे निशुल्क इतनी जरूरी जानकारी मिल रही है।
3: बिल्कुल भाभी, और मैं आपको बता दूं यह सब संभव हो पा रहा है आपके और सेहतिया भैया की मदद से। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेहतिया भैया जी और उनकी पत्नी टिक्कन देवी ने वादा किया है कि वे अपने अनुभव और ज्ञान हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे।
4: भैया इसमें कौन किसी पर एहसान कर रहा है, यह तो हमारा फर्ज है। आखिर जो हमारे साथ हुआ वह औरों के साथ ना हो। हम अज्ञानता में थे, हमने ना अपने और ना ही अपने प्रियजनों के सही तरह से देखभाल की। पैसा गवाया, समय गवाया, दर दर भटके, अज्ञानता और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर हम सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाए। जब सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को इसके बारे में बताए, उनका पैसा बचाए और उन्हें उनकी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
2: अरे टीकन भाभी, इसीलिए तो पूरा ब्लॉक आपको और सेहतिया भैया की इतनी इज्जत करते हैं। आप जिस तरह से बात करती हैं उसमें अनुभव के साथ साथ अपनापन भी महसूस होता है।
3: भाभी जी, आपकी सलाह के अनुसार आज हम अपने एपिसोड में नवजात शिशु और उसकी माँ की देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने समुदाय से बहुत सारे सवाल इकट्ठे किए हैं।
4: तो फिर देर किस बात की, पूछिए, जो इतनी पढ़ाई की है वो कहीं तो काम आए। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं सभी गर्भवती महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि किसी संस्थागत चिकित्सा केंद्र में ही बच्चे को जन्म दे, यह आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
3: टिकन भाभी, इस बात को दोहराने के लिए शुक्रिया। तो पहला सवाल है कि क्या नवजात शिशु को पोंछ कर साफ करके या नहला कर उसकी माँ को देना चाहिए?
4: ना पोंछ कर ना नहलाकर, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे तुरंत माँ की छाती से लगा देना चाहिए। इससे कंगारू मदर केयर यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क कहते हैं। इससे बच्चे का शरीर माँ की गर्माहट पा लेता है और सुरक्षित महसूस करता है।
2: तो भाभी जी, जैसा कि मैं जानता हूँ आपके भी 2 बच्चे हैं, तो आपका अनुभव क्या रहा था?
4: मेरा पहला बच्चा स्वस्थ सिंह सरकारी अस्पताल में पैदा नहीं हुआ था। वहाँ तो पैदा होते ही उसे नहला दिया और 2-4 घंटे के बाद मुझे मेरा बच्चा मिला था। बहुत परेशानी हुई थी, उसे ठंड लग गई थी और दूध पिलाने में तो बहुत समस्या हुई थी, उसकी जान पर आ पड़ी थी। जब हम उसे सरकारी चिकित्सा केंद्र में ले गए थे तो डॉक्टर ने समझाया कि बच्चे को पहले 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए और तुरंत माँ की छाती पर बच्चे को रख देना चाहिए। तो लाभंत्री के जन्म पर मैंने ऐसा ही किया। वह स्वस्थ सिंह से ज्यादा स्वस्थ है। लाभंत्री को तो 1 घंटे के अंदर पहला दूध, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो भी दिया गया।
3: कोलोस्ट्रम जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसे तो बच्चे के लिए पहला टीका कहा जाता है जो उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
4: सही कहा आपने, कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को संक्रमण और बीमारियों से बचाती है। यह संपूर्ण पोषण से भरपूर होता है जिससे बच्चे की सेहत मजबूत होती है।
2: टीकन भाभी, कई परिवार बच्चों को कोलेस्ट्रम नहीं देते कि ये साफ नहीं होता, अच्छा नहीं होता और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं सभी श्रोताओं से खास तौर पर दादियों और नानियों से कहूंगा कि ध्यान से सुनिए, ये कोलेस्ट्रम अमृत समान होता है और हर नवजात को जन्म के पहले घंटे के भीतर माँ का पहला दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे की तंदुरुस्ती, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है।
3: सही कहा आपने शशि। टिकन भाभी, मेरा आपसे एक और सवाल है। कई लोगों का मानना है कि बच्चे को सबसे पहले शहद और पानी चटाना चाहिए, उसका पेट साफ होता है, कितना सच है इस बात में?
4: बिल्कुल नहीं, नवजात शिशु का पहला टीका कोलोस्ट्रम है, उसे ना शहद, ना पानी, ना गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, किसी का भी दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। पहले घंटे के अंदर ही माँ की छाती पर लेटा दे, बच्चा अपने आप स्तनपान कर लेगा। क्यों ना एक प्रोमो सुन ले?
5: ले ले ले ले ले।
6: ये रहा, मुन्नी को शहद चटाना है।
7: अरे माँ, शहद पानी नहीं देते, ये तो हमें 10वीं में पढ़ाया है।
6: चुप रह, बुआ बनी है, डॉक्टरनी नहीं। एक चम्मच
8: भी नुकसान कर सकता है माँ जी। जन्म के घंटे भर में माँ का दूध देना बेहद जरूरी होता है।
9: सुना आपने, जन्म के एक घंटे में माँ का गाढ़ा दूध शिशु का पहला टीका होता है। ये सिर्फ बीमारियों से ही नहीं बचाता, इसे पिलाने से माँ भी आने वाले महीनों में स्तनपान आराम से करा पाती है।
6: तो ये शहद तुम ही चख लो, मुँह मीठा कर लो।
9: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
2: बहुत बढ़िया। कुछ महिलाओं ने पूछा है कि बच्चा गर्मियों में पैदा होगा तो उसे प्यास तो लगेगी, तो पानी देना जरूरी है?
4: मैं सभी माओं को बताना चाहती हूँ कि माँ के दूध में 80% पानी होता है, जिससे बच्चे की प्यास भी बुझती है और पोषण भी मिलता है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, बच्चे को ना ऊपर के दूध, ना पानी, ना कोई और सप्लीमेंट की जरूरत होती है। माँ को अपने पोषण का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से सही मात्रा में पौष्टिक आहार मिलता रहे। चलिए एक और गाना सुनते हैं, जिससे हमारी श्रोताओं को यह बात और अच्छे से समझ आ जाएगी।
10: भाई साहब, टाइम क्या हुआ है?
11: पता नहीं यार, मैं इस शहर में नया हूँ।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका

0: में जी रहे हैं। कुछ लोग उस पर मिट्टी या तेल लगाते हैं और कहते हैं कि इससे ये सूखेगा।
1: यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे घरों के बुजुर्ग को आसानी से समझ ही नहीं आती। डॉक्टरों का कहना है कि नाल को सूखने देना चाहिए, उस पर तेल, हल्दी या मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, यह एक दो हफ्ते में अपने आप गिर जाती है। अगर लाल हो जाए या दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जो बच्चे की जान को भी खतरा पैदा कर सकता है। सुना दूं एक और प्रोमो?
2: बिल्कुल भाभी जी, आज तो आप बहुत तैयारी से आई हैं।
3: कैसी हो बहन?
4: अच्छी हूँ।
3: आई आई, अरे पर जूते चप्पल यहीं उतार दीजिए।
4: बधाई हो मौसी जी, दादी बन गई आप। दावत तो मैं इसकी बुआ से लूंगी, अभी तो मेरा मुंह मीठा कराइए।
3: पहले हाथ तो धो लीजिए, इन्फेक्शन हो सकता है बच्ची को। हा? नमस्ते डॉक्टर।
4: नमस्ते। अले क्या कर रही है?
5: हाय दया, इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्ची को?
3: डॉक्टरनी साहिबा, अब आप ही समझाइए।
6: देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी।
7: शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल।
8: इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा नाल से ही होता है, डॉक्टर से पूछे बिना इस पर कुछ भी ना लगाए।
2: भाभी जी, एक सवाल ये भी है कि सर्दियों के मौसम में नवजात को गर्म कैसे रखें?
1: बच्चे को कपड़ों के कई तह में लपेटना चाहिए, इसे लेयरिंग भी कहते हैं। पहले हल्का सूती मुलायम कपड़ा, फिर एक गर्म कपड़ा और ऊपर हल्का कंबल।
2: भाभी जी, अच्छा मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चे को हीटर या चूल्हे के पास रखना चाहिए?
1: अरे बिल्कुल नहीं, इससे बच्चे की त्वचा जल सकती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका कंगारू मदर केयर है, माँ की गोद सबसे बड़ी रजाई है। बच्चे को पिता के साथ भी कंगारू केयर करवाना चाहिए, उससे बच्चे और पिता में भी एक अच्छी बॉन्डिंग होती है।
2: भाभी जी, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, नवजात शिशु को किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है?
1: सबसे बड़ा डर होता है नियोनेटल जॉन्डिस का, इससे बच्चे पीले पड़ने लगते हैं, इसे पीलिया भी कहा जाता है।
2: तो भाभी जी, इसी के साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से लक्षण देखकर माँ या परिवार को सतर्क हो जाना चाहिए।
1: इसके कई लक्षण हो सकते हैं, बहुत तेज या रुक रुक कर सांस लेना। इसके कई लक्षण हो सकते हैं जैसे बहुत तेज या रुक रुक कर सांस लेना, तेज बुखार या बहुत ठंडा शरीर, दूध ना पीना या सुस्त रहना, लगातार रोना या बहुत शांत हो जाना और त्वचा पीली पड़ना। यदि इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
2: अच्छा भाभी जी, एक बात बताइए, कई लोगों का ऐसा मानना है कि धूप में बच्चे को लिटा देने से पीलिया खत्म हो सकता है।
1: हल्की धूप नवजात के लिए फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ धूप में लिटाने से पीलिया ठीक नहीं होगा। अगर बच्चा ज्यादा पीला दिखे या सुस्त लगे या दूध ना पिए तो तुरंत अस्पताल जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। हल्के मामलों में माँ का दूध पिलाते रहें और सुबह की हल्की धूप में 10 से 15 मिनट तक लेटाएं। पीलिया को बढ़ने ना दें, क्योंकि गंभीर मामलों में फोटोथेरेपी या कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है।
2: अरे भाभी जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सी नई माएं टीकाकरण के बारे में जानना चाहती हैं कि कौन कौन से टीके जन्म के तुरंत बाद लगते हैं।
1: सबसे अहम है नवजात का समय पर टीकाकरण। पहले टीकों की खुराक को जन्म के समय दिया जाता है, जिसमें तपेदिक के लिए BCG, पोलियो के लिए OPV0 और 24 घंटों के भीतर हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक शामिल है और 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक शामिल है। ये टीके नवजात शिशु की रोग प्रतिकारक क्षमता को जीवन घातक संक्रमणों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: भाभी जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक शिशु को इतने सारे टीके लगवाए जाते हैं जिनको याद रख पाना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो एक नई माँ कैसे इन सबको याद रख पाती होगी?
1: अरे ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रसव के बाद अस्पतालों में माँ या परिवार की सदस्यों का एक विशेष कार्ड, MCP कार्ड, माता शिशु सुरक्षा कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में बच्चे को कौन सा टीका कब लगेगा इसकी पूरी सूची होती है, जिससे टीकाकरण करवाना बेहद आसान हो जाता है। और एक और

0: जरूरी बात, मैंने कई महिलाओं को टीकाकरण के बाद बच्चे को हल्का बुखार आने, टीका लगने की जगह पर हल्का दर्द या सूजन होने से घबराते हुए देखा है। लेकिन इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब सामान्य लक्षण है। इस डर से टीकाकरण ना टाले और ना ही इसे लेकर कोई लापरवाही करे।
1: भाभी जी, यह तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बच्चों को टीकाकरण बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और स्वस्थ भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर माँ बाप को समय पर बच्चे को टीके जरूर लगवाने चाहिए। लेकिन भाभी जी, आप एक बात बताइए कि टीके लगवाने की सही उम्र क्या होती है?
0: बच्चों को जन्म से लेकर 16 साल तक अलग अलग टीके दिए जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी टीके पहले 2 साल में लगते हैं। जन्म के समय 6, 10 और 14 हफ्ते, फिर 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने में टीके दिए जाते हैं। उसके बाद 5 साल, 10 साल और 16 साल की उम्र में भी कुछ टीके लगते हैं। समय पर टीकाकरण से बच्चा कई गंभीर बीमारियों जैसे टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा, डिप्थेरिया जैसे बीमारियों से बच सकता है।
2: तो दोस्तों, ये थी नवजात शिशु की सुरक्षा और सेहत की बातें, और अब हम कुछ सवाल भाभी जी से करेंगे माँ की सेहत के बारे में।
0: मैं भी सोच रही थी कि कब आप माँ के बारे में सवाल पूछेंगे। माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। पहले 1 से 2 महीने में तो माँ को बहुत देखभाल की जरूरत होती है, और यह मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। माँ के लिए जरूरी देखभाल में सबसे पहले आता है पोषण। उसे संतुलित आहार की जरूरत होती है, जैसे दाल, चावल, दूध, सब्जी और फल खाएं, और तंदुरुस्ती के लिए आयरन, कैल्शियम और विटामिन की गोलियां लें, दूध पिए और फाइबर वाले पदार्थ खाएं।
2: बिल्कुल, मेरी भाभी को डॉक्टर ने बताया था कि नई माँ की देखभाल केवल पोषण तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे पर्याप्त आराम, सफाई और भावनात्मक समर्थन की भी जरूरत होती है। माँ को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और जब बच्चा सोए तब वो भी थोड़ा आराम करे।
0: आराम तो जरूरी है, लेकिन डिलीवरी के बाद माँ को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत रहना जरूरी है। कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, इसीलिए परिवार को माँ को सकारात्मक माहौल देना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखें, और किसी भी असामान्य लक्षण जैसे अत्यधिक रक्तस्राव, दर्द या सूजन होने पर डॉक्टर से सलाह लें। शरीर की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है, विशेष रूप से टांकों की सफाई और हाथ धोने की आदत। हल्की सैर और डॉक्टर की सलाह अनुसार व्यायाम शरीर को मजबूत बनाए रखता है।
1: अच्छा, इसके अलावा पति और परिवार की भूमिका भी अहम होती है। माँ पर अकेले बच्चे की जिम्मेदारी डालने के बजाय उसकी मदद करें, जिससे वह खुद को थका हुआ या अकेला महसूस ना करे। माँ को भी अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, जिससे वह मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रह सके। जब माँ स्वस्थ और खुश रहेगी, तभी बच्चा तंदुरुस्त रहेगा।
2: बिल्कुल सही कहा आयुष तुमने, और अब हम इस एपिसोड की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी बाकी हैं। कुछ महिलाओं ने ये भी पूछा था कि माँ बनने के बाद अगली गर्भावस्था से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परिवार नियोजन के लिए कई सुरक्षित तरीके हैं, जैसे माला डी या कॉपर टी, जो अस्पताल में आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्शन और कॉन्डम भी प्रभावी विकल्प है, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तो हर महिला और उसके पति के साथ डिस्चार्ज के पहले कई सारे विकल्प दिए जाते हैं। बेहतर होगा कि पति पत्नी मिलकर इस पर निर्णय ले।
1: लेकिन भाभी जी, कुछ लोग कहते हैं कि गर्भ निरोधक लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, क्या यह सच है?
0: नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। सही गर्भ निरोधक उपाय डॉक्टर की सलाह से लेने पर पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, और माँ के शरीर को जरूरी आराम देते हैं, ताकि वह दोबारा गर्भ धारण के लिए तैयार हो सके।
2: तो टीकन भाभी, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गर्भ निरोधक उपाय जरूरी हैं?
0: बिल्कुल, अगर 2 गर्भ धारण के बीच कम से कम 2 से 3 साल का अंतर रखा जाए तो माँ और बच्चा दोनों ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इससे माँ को ताकत मिलती है और बच्चे को भी अच्छा पोषण और देखभाल मिलती है। मेरे बच्चों में 4.5 साल का अंतर है, देखिए मैं भी तंदुरुस्त हूँ और मेरे बच्चे भी।
1: तो भाभी जी, हम तो बस यही दुआ करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा सेहतमंद रहे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नवजात शिशु की और साथ ही माँ की सही देखभाल क्यों जरूरी है और कैसे की जा सकती है।
0: याद रखिए, स्वस्थ शिशु सुखी परिवार, हर माँ का ये है अधिकार।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए सुनते रहिए सेहत सही लाभ कही और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।
0: और शपथ वो कैसे भूल सकते हैं,
3: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई, टीवी हारेगा देश जीतेगा।
2: बिल्कुल, अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कही के साथ। नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने ₹500 उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। किसान मित्रों, खेती तो आप करते ही हैं और बड़ी लगन के साथ करते हैं, लेकिन आजकल का जो समय है वो परिवर्तित हो गया है। आप देख भी रहे होंगे, अगर हम बात जलवायु परिवर्तन की करें तो उसका भी सामना आप कर ही रहे होंगे। तो ऐसे में हमें जरूरत है तकनीकी जानकारी की, उन्नतशील बीजों की, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जो आपको सलाह देते हैं उनके अनुसार खेती करने की, और इसके साथ ही हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के चलने की भी आवश्यकता है, और इसके लिए हमें खेती के साथ साथ अन्य काम भी हैं वो करना भी जरूरी है। बहुत से किसान भाई सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं खेती आपको घाटा देगी, आपके लिए घाटे का सौदा बन सकती है, क्योंकि जब खेती में घाटा हो जाता है तो उसकी भरपाई फिर आप कहीं से नहीं कर पाते। लेकिन जब आप खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं या कोई और उद्योग करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, तो उसकी भरपाई आपकी हो जाती है और आप आर्थिक संकट से बच जाते हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि खेती तो आप करिए करिए, साथ ही साथ कोई ना कोई आप स्वरोजगार करिए, पशुपालन करिए, और भी बहुत से काम हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, आपका मछली पालन है, और आजकल तो हमारे किसान भाई जो जैविक खेती की हमारी सरकार सिफारिश कर रही है उसके लिए जैविक खाद का प्लांट भी लगा रहे हैं, तो खुद की खेती के लिए भी खाद काम आता है और आप उसको बेच भी सकते हैं, तो इस तरह से भी आप फायदा ले सकते हैं। तो जरूरी यही है कि आपको तकनीकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे तो उनका लाभ भी आप नहीं उठा सकते। जैसे आपको याद दिला दें कि सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, जिसको आप MSP के नाम से जानते हैं। तो ये भी योजना इसीलिए चलाई जा रही है ताकि आपके सामने आर्थिक संकट ना आए, आपकी जो खेती में लाग लगी है वो निकले, साथ ही साथ आपको फायदा हो। तो ये जो MSP है हमारे किसान भाइयों के लिए सालों से चल रही है। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी सरकार फसलों को MSP पर ही हमारे किसान भाइयों से खरीदती है ताकि हमारे किसान भाइयों को नुकसान से बचाया जा सके। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर MSP शुरू की थी, ताकि सरकार हमारे किसान भाइयों से गेहूं खरीद कर गरीबों को बांट सके। किसान मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP सरकार द्वारा हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल के लिए तय किया गया न्यूनतम मूल्य है। ये किसान भाइयों को उनकी फसल को बाजार में कम दाम पर बेचने से बचाता है, या यूं कह सकते हैं, आपको मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि किसी फसल का MSP 20 रुपये प्रति किलो है और बाजार में वो 15 रुपये प्रति किलो में बिक रही है, तब भी सरकार किसानों से उस फसल को 20 रुपये प्रति किलो में ही खरीदेगी। तो आपको अब MSP का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। और भी MSP के क्या क्या फायदे होंगे तो ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम खेत खलियान का एक हिस्सा ये भी होता है कि हमारे किसान भाइयों को जानकारी मिलती रहे, सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में पता चलता रहे, और खेती में जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, जो नए नए बीज आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिले, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह क्या है हमारे किसान भाइयों के लिए उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी होता रहे। तो इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश, कलाकार हैं तरुण बालियान।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे तरुण वालियान से ये उपदेश, और आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम खेत खलियान में MSP की, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि MSP होती क्या है और हमारे किसानों के लिए क्यों ये फायदेमंद है। तो एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि वित्तीय उतार चढ़ाव से हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए ये एक मूल्यवान उपकरण की तरह काम करता है। क्या? MSP। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP हमारे किसान भाइयों को बाजार और प्राकृतिक आपदा जैसी अनिश्चितताओं से बचाने के लिए काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए। और किसान मित्रों, आपको ये भी बता दें कि हम वर्तमान समय की बात करें तो 23 फसलें हैं जिन्हें MSP मिलता है, यानी कि MSP पर सरकार खरीदती है। इन फसलों में है बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, जौ, रागी और ज्वार के साथ साथ अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर जैसी दालें और कुसुम, सरसों, नाइजर बीज, सोयाबीन, मूंगफली जैसी तिलहन शामिल हैं। साथ ही तिल और सूरजमुखी, इनके अलावा कपास, खोपरा, कच्चा जूट और गन्ने को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिलता है। वैसे तो हमारे बहुत से किसान भाई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, लेकिन जो किसान भाई अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है? उनको करना कुछ नहीं, बस आप अपने नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाइएगा और जो भी वहां अधिकारी हैं उनसे आप मिलिएगा और वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आप MSP पर अपनी फसल बेच सकते हैं और आर्थिक संकट से उभर सकते हैं। तो इन सब बातों का किसान मित्रों आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं एक रागनी, जैसा कि आप चाह रहे होंगे कि भाई जानकारी के साथ साथ हमें मनोरंजन भी मिलता रहे, हमें रागनी, उपदेश, लोकगीत भी सुनने को मिलते रहे। तो आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए एक रागनी आपको सुनवाते हैं। और कलाकार हैं पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना। और किसान मित्रों, किस्सा रहेगा राजा हरिश्चंद्र का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना से ये रागनी, किस्सा था राजा हरिश्चंद्र का। किसान मित्रों, कार्यक्रम खेत खलियान का उद्देश्य हमारा यही है कि आपके जीवन में खुशहाली आए, और ये खुशहाली तभी आएगी जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि आप आज के समय के अनुसार अपनी खेती कीजिए और जो सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजना चला रही है उनका आप लाभ लीजिए। साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक हैं आपको समय समय पर तकनीकी जानकारी देते हैं कि आज के समय के अनुसार हमें बीज का चुनाव कैसे करना चाहिए, अपनी मृदा की जांच क्यों कराना जरूरी है, जैविक खाद का उपयोग करना क्यों जरूरी है। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और साथ ही साथ उनको उपयोग में भी लाना है। किसान मित्रों, एक और समस्या हमारे घरों में देखी जाती है कि जो बेटियां हैं बड़ी होती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को सोचना पड़ता है कि धन की व्यवस्था कैसे की जाए। बेटी को पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है, तो धन की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं वो बड़े चिंतित हो जाते हैं अपनी बेटियों को लेकर के। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना हमारी बेटियों के लिए चला रही है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई ये एक छोटी बचत योजना है। तो किसान मित्रों, ये बहुत ही अच्छी योजना है छोटी बच्चियों के लिए। और बात करते हैं अब इसकी पात्रता की, तो जो बच्चियां 10 साल से कम उम्र की हैं उनके नाम पर खाता खोला जा सकता है, और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए आप जमा कर सकते हैं और अधिकतम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। और जो पैसा आप जमा करते हैं इस खाते में उस पर हर साल 8.2% का ब्याज मिलता है। और आपको बता दें कि खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक इसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं और ये खाता 21 साल में परिपक्व हो जाता है। और बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जो आपने पैसा जमा किया है उसमें से 50% तक आप निकाल सकते हैं। किसान मित्रों, यहां पर आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के खाते खोले जा सकते हैं। आपके नजदीकी जो भी डाकघर है या जो भी अधिकृत

0: बैंक है, वहां जाकर के आप अपनी बच्ची का खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है ये बच्चियों के लिए, इसका लाभ आप जरूर लें। अभी तक आपने अपनी बच्चियों का खाता नहीं खुलवाया है और जिनकी उम्र 10 साल से कम है तो जरूर इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाएं, ताकि आपको भविष्य में अपनी बेटी की शादी की चिंता ना हो या उनको कोई उच्च शिक्षा दिलवानी है उसकी भी चिंता आपको नहीं होगी, क्योंकि तब तक बेटी के खाते में धन की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो आप शादी भी अच्छे से कर पाएंगे और उनको पढ़ा भी अच्छे से पाएंगे। तो इन सब बातों का जरूर आप ध्यान रखें। और देखिए, अब चलते चलते आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।
1: Get up.

तो किसान मित्रों, प्रियंका चौधरी द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण पांचाल आपके साथ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही उमदा डिस्कशन, जिस पर कि हमारे साथ होंगे कुछ गेस्ट और वो डिस्कशन है महिलाओं पर और मीडिया पर। लेकिन विषय क्या है? विषय है मीडिया में महिलाओं का आज के युग में चित्रण। और इस डिस्कशन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया, डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी, डॉक्टर CP रश्मि और मिस्टर प्रवीण जैन। ये सभी अतिथि आज हमारे साथ जो है वो SMFE डिपार्टमेंट शारदा यूनिवर्सिटी से। आप सभी का इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद किरण जी।
7: थैंक यू।
8: धन्यवाद मैम।
5: तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया से। डॉक्टर मुक्ता, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मीडिया में औरतों का जो चरित्र चित्रण किया जा रहा है या फिर जिस भी तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिविटी से बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में हो रहा है?
6: किरण जी, देखिए ये बहुत ही एक संगीन मुद्दा है जिस विषय में हम आज बात कर रहे हैं। और महिलाओं का मीडिया में जो चरित्र चित्रण है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होते भी रहे हैं, काफी फ्रूटफुल भी हैं। तो अगर पॉजिटिव की तरफ जाएं तो दरअसल मीडिया काफी अच्छे तरीके से आजकल जो विमेन है या जो महिलाएं हैं उनका पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कुछ एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, अगर वहां पे आप देखेंगे तो जो एक स्टीरियोटाइप इमेज विमेन्स का रहा है हमेशा से मीडिया में, हम रिप्रेजेंट करते हैं और मीडिया हमेशा एक्यूज्ड भी होता रहा है इस चीज को लेके कि उन्होंने शायद महिलाओं को कहीं एक टाइप्ड तरीके में बांध दिया है, तो उसको वो कहीं वो रूढ़िवादी जो विचारधारा है तोड़ रहा है। जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले ये होता था कि महिलाओं का काम है वो घर की देखभाल करेंगे, घर में मतलब अपने हस्बैंड्स बच्चों को देखेंगे, कहीं ना कहीं वो टूट रहा है। वो चाहे आप धारा के एड्स हो या कैसे भी, जहाँ पे ये है कि अब वो वॉइसलेस नहीं होकर उनका घर की जिम्मेदारियों में और घर की कहे ना जैसे बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं उनमें उनका पक्ष रहता है या वो जो कहेंगी वो माना जाता है। तो ये जो एड्स हैं ये बहुत तरीके से अगर बोले तो सोसाइटी में हम, क्योंकि मीडिया हमेशा सोसाइटी का एक मिरर रहा है, जो सोसाइटी में होता है वो मीडिया में दिखता है और जो मीडिया में दिख रहा है वो सोसाइटी में होना शुरू होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अभी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है वहाँ पे मीडिया का जो पोर्ट्रेल है, मतलब मीडिया में जो विमेन्स का पोर्ट्रेल है, वो बहुत हद तक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जा रहा है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ आओ बहन चुगली करें इसमें नहीं दबके रह गई है, वो अब घर में उतना ही हिस्सेदारी निभा रही है जितना कि हमेशा से पुरुष निभाते आए हैं। तो मेरे हिसाब से मीडिया काफी अच्छा कर रहा है व्हेन इट कम्स टू यू नो द पोर्ट्रेल ऑफ विमेन इन मीडिया राधर।
5: तो डॉक्टर मुक्ता से जब हमने जाना कि महिलाओं को मीडिया में जो उनका चित्रण किया जा रहा है उसकी पॉजिटिविटी के बारे में जाना, तो इसमें अब मैं डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी से बात करना चाहूंगी कि जिस तरह डॉक्टर मुक्ता जी ने बताया कि अब उनका पॉजिटिव पोर्ट्रेयल जो है वो हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि पुराने अगर हम सिर्फ 10 या 15 साल पहले ही जाएं, तो वहां से लेकर अब तक कितना बदलाव आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं वो पहले सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई की जा रही थी या फिर सिर्फ सेक्सुअलिज्म के लिए यूज किया जा रहा था, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, सिनेमा हो, उन्हें एक बेहतरीन रोल देने के लिए, या फिर सिनेमा में अगर हम बात करें तो वो उनकी जो विमेन ओरिएंटेड मूवीज थी वो कितनी चल रही थी या फिर उनमें उनको किस तरह के रोल दिए जा रहे थे, सोसाइटी में कितना एक्सेप्टेंस था। तो तब की एरा में, ज्यादा नहीं 10-15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, और आज में आप कितना फर्क महसूस करते हैं?
7: देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप किसी महिला के बारे में सोचते हैं या सोचने के लिए शुरू करते हैं तो सोच नहीं समझ रखिए। आए दिन ऑटो के पीछे जो मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये महज शब्द नहीं है। यहाँ सिर्फ महिला की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस जीवन की बात हो रही है जो प्रकृति आपको देती है। जो प्रकृति की बात आती है तो प्राकृतिक रूप से आप समझिए कि जितना एक पुरुष के पास ये राइट्स है उतना ही उस महिला के पास भी राइट्स है। पहले तो वो दायरे को समझना जरूरी है जो इंसान ने स्वयं ही बना दिया है, और जब इसको बनाता है तो समझिए आप एक दूसरे पर हावी हो। अब हावी हो जाते हैं तो ना वहाँ पे जीवन है ना मृत्यु है। यहाँ ना मीडिया रहती है ना मीडियम रहता है। माध्यम तो हम और आप हैं, और माध्यम बनने के साथ साथ संवाद भी जरूरी है। अब मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने होकर आया जो वॉइस फॉर वॉइसलेस, यहाँ सिर्फ वॉइस फॉर वॉइसलेस वाली बात है। तो ये मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी? जब मीडिया कोई चीज दिखाता है तब आपके दिमाग में ये चीज समझ में आती है कि नहीं, ये सही दिखा रहा है। ये चीज तो, ये तालीम तो आपको घर से ही शुरू करनी पड़ेगी कि आपकी सोच जो है वो सकारात्मक कब होगी। सोच सकारात्मक जब आप संवाद करेंगे, बिना संवाद के कोई भी चीज। अब चलते हैं 15-20 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, नहीं थी, किताबों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, या कई ऐसे शिक्षाविद हैं या कई ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं और कई ऐसे कार्य हुए हैं जो सामने आए हैं और उसके बारे में हम जान पाए हैं। लेकिन जानना ही सिर्फ जरूरत नहीं थी, समझ बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मीडिया एक महिला को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करता आया है, उसको सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से प्रसीव कर रहा है, किस प्रकार से ले रहा है, इसकी समझ वो सामाजिक दायरे में समझना बहुत जरूरी है। मीडिया समाज से है, समाज मीडिया से है, परस्पर मेलभाव बताना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सिर्फ मुद्दा यह नहीं है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए साथ समझ, महिलाओं का कहिए प्राकृतिक रूप से जो संरचना है पुरुष से बिल्कुल अलग है। अब पुरुषों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके साथ सामंजस्य बिठाएं, समझ बिठाएं, क्योंकि बिना सामंजस्य और संवाद के कोई भी चीज संभव नहीं। तो मीडिया है तो मीडियम है, आप हैं तो हम हैं, इस तरीके से। तो महिलाओं, मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये कह लेने से नहीं, इसको सार्थक करना हम सब के लिए ये सबसे बड़ा दायित्व है।
5: उत्सव जी, जैसे कि आपने बात कही अभी कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये आपने एक एथिकल बात कही है जो कि हमारे समाज में होनी चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि पिछले 15 साल में आप कितना डिफरेंस अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब हम पहले के एडवर्टाइजमेंट्स देखते थे तो उसमें महिलाओं को एक खूबसूरत महिला होनी चाहिए, एक मतलब आज्ञाकारी महिला होनी चाहिए, वो महिला जो सिर्फ घर का काम कर रही है, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रही है, वहाँ पर किसी तरह की भी कोई कमी रह ना जाए, और अगर कमी रह रही है तो उसे सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हो, वहाँ पर उसे एक नेगेटिव रोल के तौर पर उसका पोर्ट्रेल किया जाता है। जैसे हम डेली सोप्स भी देख लें तो जो महिला बगावती है या फिर जो महिला ये सब चीजें नहीं कर रही है, घर की जिम्मेदारियां नहीं कर रही है, तो हम उसे एक नेगेटिव रोल में देखते हैं।
7: मैंने आपको इस बीच में एक शब्द कहा था कि मीडिया जो दिखा रही है वो आदमी सबसे पहले समझ जाता है, और यहाँ पे सामने बैठा व्यक्ति कुछ कह रहा है या समझ रहा है, उसको समझने में हम शायद पूरा जीवन लगा देते हैं। तो शायद संवाद की कमी है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इतने टेक्नोलॉजिकल आइडियाज के साथ घिरे हुए हैं कि खाना तक ऑर्डर करने के लिए अपनी माँ से ना कह के अब जोमेटो हमारी माँ। तो बड़ा जो है द्वंद पैदा हो रहा है। इमोशन जो है, एक तरफ टेक्नोलॉजी आपको सहूलियत देता है, दूसरी तरफ रिलेशनल आइडियाज को समझने में द्वंद पैदा करता है। जरा सी दूरी हुई नहीं कि आपकी समझ गड़बड़ा जाती है और आप बेचैन से हो जाते हैं। मीडिया अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहा है, बहुत तरीके से बढ़ा रहा है, लेकिन मीडिया का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया का भी एक दायित्व बनता है कि मीडिया, कई ऐसे मीडियाज हैं, मैं किसी मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन कई ऐसे मीडियाज हैं जो शायद समय से परे होकर के कई चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। आज सोशल मीडिया के दायरे में देखे तो फेक न्यूज का जो एक दौर चला तो उसमें फेक न्यूज लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, महिला सिर्फ महिला है, पुरुष सिर्फ पुरुष है।
5: जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो दोनों जो है वो एक डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, तो उनको उन्हीं की तरह से सम्मान मिलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सीपी रश्मि जी से। रश्मि जी, आज हम जब देख रहे हैं सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर हम थिएटर भी देखते हैं, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें हमेशा खूबसूरत महिलाएं ही दिखाई देती हैं। वहाँ पर जगह नहीं है भद्देपन की, लेकिन महिलाएं तो वो भी हैं, राइट्स उनके भी हैं, टैलेंट उनके अंदर भी है। तो आप क्या सोचती हैं कि आज की मीडिया में जो बॉडी इमेज या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या उनमें कोई बदलाव देख रही हैं आप पिछले 15 सालों में?
8: किरण जी, बहुत ही ज्यादा बदलाव है। ठीक है, अभी आपने दो बातें करी, एक कि सिर्फ सुंदर महिलाओं को देखते हैं, बट जो कि डॉक्टर मुक्ता ने बोला कि कैसे चीजें बदली और कैसे मीडिया का पॉजिटिविटी उन्होंने दिखाई कि कैसे, मतलब आजकल आप देखेंगे प्लस साइजेस के भी एड्स आ रहे हैं। बट समवेयर डाउन द लाइन मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिपस्टिक फेमिनिज्म जो कि आजकल चल रहा है, जिसमें हर औरत को बोला जाता है, जहाँ पे कि मैं डॉक्टर उत्सव की भी बात को लेकर आना चाहूंगी, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो औरत एम्पावर्ड है या सशक्त है जो कि किसी भी टाइम महीने के उन दिनों में भी सफेद पैंट पहन के दौड़ रही है। ठीक है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मीडिया आज के दौर में इज एवरीथिंग अबाउट कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब उस सेक्टर को उसको क्या कहते हैं टारगेट किया जा रहा है जो कि कंज्यूमर्स ने छोड़ दिया था। ठीक है, अब जैसे कि आज की तारीख में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत है जहाँ पे हम बहुत ऑनलाइन कपड़े खरीदने लगे हैं। एक टाइम ऐसा था जब आप स्टोर पे जाते थे आपको एक्सेल और डबल एक्सेल कपड़े मिलना मुश्किल होते थे, वहां आज आपको 7XL से लेके 8XL तक के कपड़े आराम से मिल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये समझा है कि ये भी एक क्या कहते हैं
6: ग्रुप है
8: जिसे आइडेंटिफाई किया गया, जिसे हम कपड़े बेच सकते हैं। हमारी इंडियन संस्कृति में एक बहुत चीज है कि कपड़ा वो पहनो जो कि आपको कंफर्टेबल हो, बट आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि मॉडल्स होती हैं जो कि टाइट जीन्स पहनती हैं, 15XL तक की मॉडल होती हैं, चाहे वो देखने में अच्छी नहीं लगे, बट बोला जाता है कि ये नारी सशक्तिकरण का एक रूप है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि मैं ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि वो खुद सोचे कि क्या सही है गलत है, सबको पता है
6: जी।
8: बट कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बॉडी इमेज की बात आ रही है उसको एक नए मार्केट को डेवलप किया जा रहा है
6: जी।
8: ठीक है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एक तरफ हम ये प्रमोट कर रहे हैं चाहे गोरा हो चाहे काला हो चाहे मोटा हो चाहे पतला हो सब अच्छा है, सब क्या कहते हैं हर औरत का एक रूप है, वहीं दूसरी तरफ फिल्टर्स
6: जी
8: को भी प्रमोट किया जा रहा है। अगर मैं मोटी हूँ या कोई पतला है तो अलग एक पर्टिकुलर एंगल से ही फोटो लेगा, उसको प्रमोट किया जा रहा है, कोई भी अपनी नेचुरल फोटो डालना नहीं चाह रहा है इंटरनेट पे। अगर आप किसी लोगों को डीपी के थ्रू जानते हैं और उन्हें रियल में मिलेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें, स्पेशली फीमेल ज्यादा क्या कहते हैं फिल्टर्स का प्रयोग करती हैं।
6: तो आपको क्या लगता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर महिलाओं में किसी तरह का प्रेशर है?
8: बहुत प्रेशर है, ऐसी बहुत रिसर्च की गई है, अगर आप जाएंगे इंटरनेट में पढ़ेंगे, इसकी वजह से बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। लोग औरतें मतलब ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग अपनी डीपीज में फिल्टर्स यूज कर करके, स्पेशली स्नैपचैट जैसे फिल्टर, उसमें बहुत तरीके के फिल्टर्स हैं, कि उन्होंने अपना जो ऑनलाइन स्पेशली जो इंटरनेट पे अपना रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से अपने आपको प्रस्तुत किया है वो इस तौर पे किया है कि वो अपने कुछ इंटरनेट के दोस्तों से मिलने से पहले जाके प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं लोग, तो मतलब इतना असर पड़ रहा है। तो अभी क्या है ना, हम एक ऐसी जनरेशन बना रहे हैं जो कंफ्यूज्ड है, जहाँ पे हर बात को किया जा रहा है क्योंकि हर तरीके के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एक फोन से लेके फिल्टर से लेके अलग तरीके के कपड़े से लेके मेकअप से लेके सब बिक रहा है, और हर चीज को बेचने के लिए एक इस तरीके के सूडो फेमिनिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें फीड की जा रही है जिसका फेमिनिज्म या एक औरत होने से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमें ये बात जैसे कि डॉक्टर उत्सव ने कहा समझना जरूरी है, मीडिया में जो दिखता है वो नहीं होता है। ठीक है ना, मीडिया आजकल हम शायद वो उस जमाने का मीडिया नहीं रह गया जिसे बहुत मॉनिटर करके प्रस्तुत किया जाता था लोगों के सामने, आजकल इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक स्नैपचैट इंस्टाग्राम, जिसमें कंटेंट कोई भी दे रहा है और हम उन कंटेंट को देख रहे हैं। तो जहाँ पे हमें हर चीज को बहुत सोच समझ के उस चीज को कहते हैं ना आगे ले जा, अगर कोई मुझे कहेगा ये करने से आप एम्पावर्ड हो, तो आपको अपने आप से 5 सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं एम्पावर्ड हूंगी ये करने से या नहीं हूंगी। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बॉडी, आपकी बॉडी क्या है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपके खुद के स्टैंडर्ड्स क्या है सुंदर होने के। ठीक है, क्या चीज आपको डिप्रेस्ड कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है, क्या चीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है, क्या नहीं। नहीं कर
5: क्या
8: रही
5: नहीं कर रही है। डॉक्टर मुक्ता से मैं इसी के बारे में कॉन्टिन्यूटी में ही एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने बोला, एक वर्ड यूज किया सूडो फेमिनिज्म, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओपनली किसी भी चीज के बारे में बात करना,
6: अट्रैक्टिव बात करूंगी, लेकिन हाँ ये वो आप कहेंगे ना सामाजिक कॉन्सेप्ट हैं जो समय के साथ बदलते भी हैं। सूडो फेमिनिज्म जैसा भी एक कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है आज उसकी एक डेफिनेशन है आने वाले समय में और उसमें और डेवलप हो डेफिनेशन। तो अगर हम मीडिया में ही विमेन के पोर्ट्रेयल की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का। अब वो सशक्तिकरण जो है उसके अपने ही बहुत सारे डेफिनेशन हैं। हमें लगता है कि यदि महिला आजाद है, मतलब अपने डिसीजन खुद लेने के लिए आजाद है, वो सशक्त है। अगर वो अपना परिवार चलाने में इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड की भागीदारी कर रही है तो वो सशक्त है। ठीक है, तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हम सशक्तिकरण

0: के नाम पे मीडिया में क्या परोस रहे हैं। इसमें जैसे आप देखें कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें या सिनेमा की बात करें ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक हमें बड़ा कंटेंट मिलता है, एडवर्टीजमेंट में छोटे कंटेंट्स मिलते हैं। तो जैसे एक सीरीज है जिसके बहुत सारे एपिसोड्स चल रहे हैं या उसके फर्दर सीरीज चल रहे हैं, 4 more shorts प्लीज आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें भी महिलाएं हैं। लेकिन क्या वहाँ जो पोर्ट्रेल है हम उसे सशक्तिकरण कहेंगे? मतलब बीइंग अ वुमन, मैंने उसका एक एपिसोड या दो देखे, मुझे वो लगा कि नहीं, वो पोर्ट्रेल ऑफ वुमन नहीं चाहती मैं। मतलब मैं भी एक महिला हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो, क्योंकि वो मैं उसके साथ एसोसिएट अपने आप को नहीं कर पाती। अगर मुझे लग रहा है कि समाज में महिलाओं को रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसी महिला मैं नजर आऊं, और मैं हूँ भी नहीं, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती उससे। तो अगर मीडिया की जिम्मेदारी है तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ पोर्ट्रे करें जिसमें जो महिलाएं हैं वो वैसी दिखें। सशक्तिकरण के नाम पर कुछ बहुत अलग तरीके से उन्हें पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए ना। तो मैं आई थिंक यही कहूंगी, अब सूडो जर्नलिज्म या सूडो सॉरी फेमिनिज्म, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा ना, सबका अपना देखने का नजरिया है, ठीक। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, मैंने बहुत सारे पुरुषों को महिलाओं के लिए अच्छी बातें करते सुना है, और मैंने उन्हीं लोगों के अगेंस्ट लोगों को बोलते भी सुना है कि वो तो फेमिनिस्ट हैं। तो ये जो एक टाइप हो जाते हैं ना कि आप महिलाओं के बारे में बात करें तो आप फेमिनिस्ट हैं, ये विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मीडिया कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हाँ, जैसे कंज्यूमरिज्म है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। हम सिर्फ कॉन्टेंट बनाए और इन रिटर्न हमारे को कुछ भी नहीं मिले, ये भी नहीं हो सकता। बट हाँ, कितनी जरूरत है और वो कैसे पहुंचाया जाए, जैसे उत्सव जी ने भी बहुत अच्छे से बोला, उन्होंने बताया कि हमें समझ डेवलप करनी है। और आई थिंक यही सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया दोनों रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हाँ, हमारा ऑडियंस इतना समझदार होना चाहिए कि जो उसे दिखाया जा रहा है उसे कैसे परसीव करता
1: है। बिल्कुल। डिस्कशन में हमारे साथ प्रवीण जैन जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हमारे बाकी अतिथियों ने बताया कि मीडिया में वुमेन को किस तरह से आज रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर पहले से अब तक कितना बदलाव आया है, उसी को ही आगे ले जाते हुए मैं आपसे सिनेमा को लेकर सवाल पूछना चाहूंगी कि सिनेमा में जैसे कि पहले हम देखते थे तो औरतों के रोल्स होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ हीरो के आजू बाजू नाचने के या उनसे सिर्फ उनका लव इंटरेस्ट होना, सिर्फ इतना ही उनका होता था। लेकिन अब जो हम सिनेमा देख रहे हैं उसमें अब उन्हें बहुत ही सशक्त महिला के तौर पर भी दिखाया जा रहा है, मेन लीड्स में भी दिखाया जा रहा है, पूरी की पूरी सीरीज भी वुमेन ओरिएंटेड है जो कि बहुत हिट भी हो रही है। लेकिन अभी भी कई सारी सीरीज और मूवीज में हम देखते हैं कि उन्हें भोग की वस्तु के तौर पर ही दिखाया जाता है। तो आप किस तरह से अभी जान पा रहे हैं कि कितना फर्क पड़ा है?
2: मैम, ऐसा है कि आज से 15 से 20 साल पहले भी जो सिनेमा बनता था उसमें भी कई जो फीमेल कैरेक्टर होती थी वो लीड रोल करती थी, जैसे श्रीदेवी थी, रेखा थी, उन्होंने फीमेल रोल करे हैं। हाँ, इम्सा पाटिल। बट स्मिता पाटिल को छोड़ दे तो श्रीदेवी के भी जो लीड रोल थे वो बेसिकली हीरोइन टाइप ही थे, उसमें उनका पोर्ट्रेल एक हीरोइन या गर्लफ्रेंड का रोल ही निभाने का होता था। बट अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेरियस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नए नए टाइप की वेरियस सीरीज आ रही है जहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। कि पहले होता था अगर एक लेडी फीमेल है तो वो फीमेल है, बट अभी दिखा रहे एक लेडी फीमेल भी है, वो गृहिणी भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, और सारे रोल एक साथ निभा रही है और अपना काम कर रही है। मतलब आपको देख के लगेगा हाँ यार, ये वुमेन तो मेरे आसपास ही कहीं होती है, पर वो हो सकता है पुलिस वाले हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, या किसी बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हो, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी उसका जो प्रतिशत है, अगर हम देखें कि मेल प्रतिशत जो फिल्में आती हैं, ओटीटी आती है, उसके मुकाबले कम है, और एक दो कुछ को छोड़ दिया जाए तो उनमें ज्यादातर कुछ में उनको ग्लैमरस ही दिखाने की कोशिश की जा रही है। इवन इन सम कॉप फिल्म तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कॉप है, फीमेल है, स्ट्रॉन्ग है,
1: बट उसमें भी पूरा ग्लैमर
2: घुसा दिया जाए कि वो हैज टू बी लाइक स्लिम फिट फाइटर टाइप की। बट ऐसा जरूरी नहीं हर औरत स्लिम फिट वैसी ही हो, लेकिन वो पोर्ट्रेट पुलिस वाली ना हो सकती हो, जबकि रियल लाइफ में हम देखें तो ऐसा नहीं होता है कभी। तो प्रतिशत कम है और इसमें समाज को औरतों को भी स्वीकार करने की जरूरत है।
1: मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर साधारण पुलिस वाली को देखा जाए, जो हमारे समाज में हम देखते ही हैं, आते जाते जाए, वो ट्रैफिक पुलिस में हो या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन में हो, तो उनका जो आउटफिट है वो सेम आउटफिट आप मूवी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि मेल्स के लिए हम यूज करते हैं, पर फीमेल्स के लिए जो आउटफिट यूज किया जाता है वो उसमें भी वो लोग ग्लैमर फैशन ग्लैमर और इस तरह की चीजें डाल देते हैं,
2: फिटनेस को दिखाया जा रहा है। जबरदस्ती भाई, आप कॉप एक जो इंटेलिजेंट कॉप होता है उसकी बुद्धि से उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, ना कि उसकी फिटनेस अच्छी चीज होती है, लेकिन वो एक प्रायोरिटी नहीं होती कि वो स्लिम फिट ही हो हमेशा। तो ये मेरे को लगे रीजन है कि अभी भी मीडिया में इस तरह का पोर्ट्रेल कम किया जा रहा है, जो कि इसको बढ़ाने की जरूरत है और लोगों को भी ऐसे अपनी समझ इस बारे में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि समझ विकसित करने की जरूरत है, जो कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
1: जी, आपने बहुत सही बात करी प्रवीण जी। उत्सव जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हम टीवी

0: कहीं ऐसा भारतीयता की जो महक होती है जिस तरीके से वो, लेकिन आज मीडिया ने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मीडिया जो चीज आपको देगा वही आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ पे कई ऐसी कम्युनिकेशन की थ्योरीज अप्लाई करने के बाद और बेतुके ऐसे कई सवाल खड़े करने के बाद, क्योंकि कई मीडिया सिर्फ टीआरपी को लेकर काम कर रही होती है, वो संजीदा नहीं है महिला को लेकर के, और जहाँ कोई संजीदगी नहीं है वहाँ पे विचार नहीं पनपेगा। पहले विचारों के साथ अभ्यास किया जाता था, जहाँ अभ्यास खत्म हो गया तो आप कुछ भी परोस सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है उसके पास आज की डेट में समय नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इन शॉर्ट ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अखबार जो है, अब लोग इन शॉर्ट में खबरों को जानना देखना पसंद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब समय नहीं देना चाह रहा, ना ही रिश्तों को, ना ही अपने जीवन को, ना ही अपने कार्यशैली को। कार्यशैली ही उसको जो है चला रही है, अपने जीवन को चला रही है, और वो फिर जो भी कंज्यूम करता है वही वो सामने निकाल के देता है। तो सिर्फ उसका दिनचर्या जो जब शुरू होता है तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसे सवाल, तो मीडिया जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व अब और बढ़ गया है। उसका जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है उसका दायित्व बढ़ता जा रहा है। मुक्ता जी ने कहा कि कई ऐसे जो है समाज में ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद एक तरफ आप समझ पा रहे हैं कि महिला सशक्त हो रही है, लेकिन क्या वह सही कंटेंट दे रहा है कि नहीं। ओटीटी का एक दायित्व तो होता है भाई 18+ कंटेंट है। 18+ कंटेंट का मतलब, कहने का मतलब यह है कि उसमें आप भद्दापन भी दिखा सकते हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 18+ कंटेंट आप ये तो नहीं जान पा रहे ना कि कौन कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे ओटीटी हो चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का एक विश्वास और एक दायित्व तो होना चाहिए कि वह जहाँ कहीं भी महिला, तो उसको महिला के नाम से ना रिप्रेजेंट करे, उसको पहले जीवन के नाम से रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो पहले जीवन है, महिला बाद में है। मेरा मानना है कि अब पशु पक्षी को भी आप, वो पुरुष है, वो नर है, वो मादा है, पहले जीवन देखिए, पहले श्वसन क्रिया देखिए कि वो चलता फिरता एक जीवन है, तब आप समझ पाएंगे कि वो महिला नहीं, पहले जीवन है। शरीर के आवरण से कौन खूबसूरत है, कौन भद्दा है, इसको जान लेने से शायद आपको क्षणभंगुर आत्म तृप्ति हो सकती है, लेकिन आप खुद में जब एनालाइज करेंगे जीवन के उन आखिरी पलों में, तो वो सारी जो है कृतियां आप तक आएंगी, आपका आएंगे, आपके नजरों के सामने आएंगे। तो महिला कोई उपभोग या संभोग या कोई भी ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है कि मैं शब्दों को लेकर के, हाँ संजीदा हूँ, शब्दों को लेकर संजीदा हूँ, लेकिन हाँ महिला सिर्फ एक दायरे के लिए नहीं, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, फिर कहता हूँ जीवंत है, जीवन है, श्वसन क्रिया उसमें भी है। व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो महिला का सम्मान या पुरुष का सम्मान, फेमिनिज्म का मतलब यह नहीं कि फेमिनिज्म ही आप एक महिला होकर के, फेमिनिज्म का मतलब है जहाँ बोथ द जेंडर्स आर बीइंग रिप्रेजेंट एज इक्वल,
1: राइट,
0: तो दोनों जेंडर को समान रूप से देखें। अब तीसरे जेंडर की बात आती है तो उसको भी समान रूप से देखिए।
1: जी,
0: क्योंकि लड़ाई ये उसकी नहीं है, लड़ाई इस मानव सभ्यता और समाज के साथ हम सब की लड़ाई है। जिस दिन ये दायित्व तो हम सब ने उठा लिया तो शायद हमें इस चीज का डर ही नहीं रहेगा कि हमारी घर से बहने, माताएं बहने बाहर जा रही हैं और उनके साथ जो है कोई ऐसा अभद्र व्यवहार होगा। तो ये दायित्व तो हम सब का बनता है।
1: जी, धन्यवाद आप सभी का। आज जो हमने बात यहाँ पर की है उसमें एक बात तो निकल कर यही आई है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। कुछ चीजें पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रही हैं, सकारात्मक भी हैं, कुछ चीजें नकारात्मक भी हैं, लेकिन अभी भी हमें औरतों की स्थिति को मीडिया में सुधारने की बहुत जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर उत्सव जी हैं, डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया जी हैं, या फिर डॉक्टर सीपी रश्मि हैं, या प्रवीण जैन जी हैं, सभी ने एक ही बात कही है कि समाज को अभी बहुत सुधरना है, बहुत समझना है, बहुत सीखना है। तो पहल खुद से होती है, सबसे पहले हमें अपनी सोच को सुधारना है और फिर उसके बाद हम किसी का भी जो चित्रण है वो एक जीवंत आत्मा के तौर पर हम कर पाएंगे, एक जीव के तौर पर कर पाएंगे, हम उसे महिला या पुरुष के तौर पर नहीं करेंगे। तो महिला या पुरुष कोई भी है, वो एक जीव है और उसी के हिसाब से वो क्या डिजर्व करता है अपनी लाइफ में, यही हमें चित्रण हमेशा करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो वहाँ पर। सभी अतिथियों का हमारे इस शो में आने के लिए और अपने विचार इस विषय पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हम फिर से आएंगे लेकर कुछ ऐसे ही विषय जिसमें कि हमारे साथ इसी तरह के एक्सपर्ट होंगे और वो अपनी राय आप तक रखेंगे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। बने रहिए सुनो शारदा 90.8 के साथ। मैं थी आपके साथ किरण, नमस्कार।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिविजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिविजन करूँगा। कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिविजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिविजन बताते थे और उस शॉर्ट डिविजन से गाना निकलता था।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: अरे सुनीता कैसे बा मुनिया?
6: नमस्ते आशा दीदी,
5: सब ठीक बा?
6: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
5: जी दीदी,
6: जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, क्रेट
7: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा न

0: चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचे तो बेटा। बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

सुना शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपेश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जाँच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए।

0: के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए।

0: जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: अरे सृष्टि, अरे क्या हुआ सृष्टि, मानव ने ऐसा क्या खास बनाया है?
1: ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा विवेक भैया।
0: अच्छा भाई, तब तो जरूर देखना पड़ेगा।
1: हाँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए विवेक भैया।
0: अरे वाह, अरे वाह भाई, ये तो पवन चक्की का मॉडल है।
1: हाँ भैया, शायद मानव ने ये मॉडल स्कूल में विज्ञान दिवस के अवसर पर होने वाले विज्ञान मेले के लिए बनाया होगा।
0: अरे मानव यही आ रहा है। मानव, मानव इधर आ।
1: हाँ,
0: इसी से पूछ लेते हैं। मानव बताना जरा मॉडल के बारे में।
1: हाँ मानव, ये मॉडल स्कूल में होने वाले विज्ञान मेले के लिए है ना?
2: हाँ दीदी, ये मॉडल मैंने उसी दिन के लिए बनाया है। जरा बताओ तो, पवन चक्की का ये मॉडल कैसा बना है?
1: मानव, ये मॉडल मुझे मॉडल कम खिलौना ज्यादा लग रहा है।
0: हाँ मानव, बुरा मत मानना, लेकिन सच कहूँ ना तो तुमने इस मॉडल को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की, या फिर बनाते हुए ठीक से ध्यान नहीं दिया। अब देखो, इसके पंखे छोटे बड़े हैं, है कि नहीं?
1: हाँ।
0: इन सभी का आकार समान होना चाहिए था।
2: विवेक भैया, वो तो जल्दी जल्दी बनाने में ना मेरे को ध्यान ही नहीं रहा।
0: अरे मानव, किस बात की जल्दी थी तुम्हें?
1: अरे भैया, मानव की तो हर काम में जल्दी करने की आदत बन गई है।
0: अरे मानव, कितनी बार समझाया तुम्हें कि जल्दी का काम अच्छा नहीं होता।
1: भैया कहते हैं ना मानव, जल्दी का काम शैतान का होता है।
3: क्या हुआ बच्चों, कौन शैतान का काम कर रहा है?
1: कोई नहीं मम्मा, वो तो विवेक भैया मानव को समझा रहे थे।
0: हाँ?
1: कि जल्दी में कोई काम अच्छे से नहीं होता।
0: हाँ?
2: देखो ना मम्मी, मैंने पवन चक्की का मॉडल बनाया है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी गलती तो हो सकती है ना?
0: छोटी मोटी?
3: भाई छोटी मोटी गलती तो ठीक है मानव, पर एक बात का ध्यान रखना कि जल्दी जल्दी किया गया कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता।
2: अरे मम्मी, पापा आजकल कहते तो रहते हैं कि इतनी जल्दी साल खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं लगता। अब जब प्रकृति ही इतनी जल्दबाजी कर रही है तो मैं क्यों धीरे धीरे चलूं?
1: अरे मानव, अपनी गलती छिपाने के लिए प्रकृति को क्यों दोष दे रहा है?
0: हाँ? हाँ?
3: वैसे भी प्रकृति में तो सभी कार्य एक निश्चित समय पर ही होते हैं। और प्रकृति कौन सा काम जल्दी जल्दी करती है?
0: और मानव जानता है, ये जिस धरती पर तू इतना उछल कूद करता रहता है ना, उसको भी आज की अवस्था में पहुँचने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे
2: हैं। लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं?
3: हाँ मानव, यही सच है कि लाखों करोड़ों वर्ष के दौरान धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों के कारण ही आज धरती वर्तमान की अवस्था तक पहुंची है।
2: तो आपके कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में अलग थी और आज उसकी स्थिति अलग है?
3: हाँ मानव, हमारी धरती तो लाखों करोड़ों वर्षों से धीरे धीरे सजती संवरती हुई आज जैसी बनी है।
0: और जानता है मानव, इस दौरान इस धरती में कई परिवर्तन हुए हैं, तब जाकर यहाँ जीवन को बनाए रखने वाला वातावरण विकसित हो पाया है।
1: मतलब ये भैया कि हमें हमारे आसपास दिखाई देने वाला जीवन पृथ्वी में लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का नतीजा है।
3: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि तुमने। पृथ्वी पर जीवन इसलिए पनपा क्योंकि ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक कारक मौजूद थे, और ये सब धीरे धीरे होने वाले चरणबद्ध परिवर्तनों का ही परिणाम है।
2: भैया तब तो आपको मुझे धरती के विकास की कहानी सुनानी ही पड़ेगी।
0: अच्छा भाई सुना।
4: गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग पापा।
4: कौन कहानी सुना रहा है, जरा हमें भी तो अपनी मंडली में शामिल कर लो।
1: कहानी नहीं पापा, हम तो आज पृथ्वी के विकास की बात कर रहे थे।
4: वेरी गुड भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। पर आज अचानक तुम्हें पृथ्वी के विकास के बारे में जानने की सूझी, क्या कोई विशेष बात है?
1: कुछ विशेष तो नहीं पापा, दरअसल मानव ने पवन चक्की का एक मॉडल बनाया है।
4: वेरी गुड।
1: और पापा आपको तो मानव की जल्दबाजी की आदत पता ही है ना?
0: ना कुछ नहीं हुआ पापा, बस जल्दबाज मानव पवन चक्की का एक अच्छा मॉडल नहीं बना पाया।
2: पापा आप सृष्टि दीदी और विवेक भैया की बातों में ध्यान मत दो, ये तो कभी मेरे काम की तारीफ करते ही नहीं है।
3: ऐसी बात नहीं है बेटा, ये बात तो तुम भी मानते हो ना कि इन दोनों के सुझावों से तुम्हारे कई काम भी तो अच्छे होते हैं।
2: वो तो है मम्मी, पर आज भैया की ये बात कि हमारी पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद आज की अवस्था में पहुंची है, मुझे जरा जमी नहीं। इसीलिए मैं पृथ्वी के विकास के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ।
4: अच्छा तो ये बात है मारव, वैसे ये अच्छी बात है, इसी बहाने हम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर लेंगे।
0: हाँ बाबा, और ये भी बता देंगे कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं।
4: आखिर तो तुम मेरे ही बेटे हो।
0: बोलना जरूर है। हाँ तो मानव, ये तो तुम्हें पता ही है ना कि हमारी धरती का जन्म सौर मंडल के जन्म के समय हुआ था, ठीक?
2: हाँ भैया, ये तो मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि पृथ्वी का जन्म करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था।
4: और बच्चों, आरंभिक समय में तो हमारी पृथ्वी बहुत गर्म और पिघली अवस्था में थी।
1: मैंने तो ये भी पढ़ा है कि शुरुआत में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों, चट्टानों और अन्य पदार्थों की बरसात होती रही थी।
0: बिल्कुल ठीक पढ़ा है शशि तुमने। तब इन बरसने वाले पदार्थों के कारण पृथ्वी में बहुत उथल पुथल होती रहती थी।
4: एक मिनट भाई वसुधा। हाँ। अब तो भूख के मारे हमारे पेट में भी उथल पुथल हो रही है।
2: हाँ मम्मी, और नाश्ते का समय भी तो हो गया है।
1: मानव, घड़ी देखकर खाते पीते हो क्या?
3: नहीं बेटी, वो तो नाश्ता लगाने की याद दिला रहा है। वैसे भी उसके खाने का कोई टाइम है क्या? चलो मैं अभी कुछ नाश्ता लेकर आ रही हूँ।
2: वैसे आज नाश्ते में क्या बना होगा?
0: अरे अब आ तो रहा है, खा कर ही देख लेना।
4: अब लो, हाँ तुम्हारी मम्मी नाश्ता ले भी आई।
5: ये लो।
4: खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई।
5: क्या बना है आज?
2: भाई वाह, चावल और परदार पराठे।
0: मम्मी क्या खुशबू है, मजा आ गया। और पापा, पराठे देखकर मुझे पृथ्वी के विकास की एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान आई।
1: कौन सी बात भैया?
0: तुम्हें तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी भी अलग अलग परतों में बटी हुई है, जानती हो ना?
1: हाँ भैया, मैंने पढ़ा तो था कि पृथ्वी में मुख्यतः 4 परतें हैं। हाँ
2: 4 परतें? अरे मम्मी भी तो परतों वाले पराठे बनाती है।
4: हाँ,
0: जो कि बहुत बहुत ही टेस्टी होते हैं। मानव, देखा जाए तो ये धरती भी हम सब की माँ है, जिसने हमें पाला पोसा है।
4: और रही धरती की परतों की बात, तो हाँ हमारी शुरुआती गर्म धधकती धरती जब ठंडी होनी शुरू हुई तो उसमें धीरे धीरे 4 परतें बनी।
2: मतलब पृथ्वी की परतें उसके जन्म के बाद बनी?
0: हाँ मानव, पृथ्वी के जन्म के बाद पृथ्वी में उपस्थित भारी पदार्थ इसके केंद्र की ओर और हल्के पदार्थ सतह की ओर आ गए।
4: और बच्चों, इस प्रकार पृथ्वी के जन्म के करीब 10 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपटल का निर्माण हुआ।
2: भूपटल के अलावा अन्य 3 परतें भी तो हैं।
3: इन परतों के नाम तो मुझे भी पता है। दूसरी परत को प्रवार यानी मेंटल कहते हैं, और तीसरी और चौथी परतें बाहरी कोर और अंदरूनी कोर कहलाती हैं।
2: अरे वाह मम्मी।
4: थैंक यू
0: पापा, मैं मम्मी को वेरी इंटेलिजेंट।
4: कोई बात नहीं।
0: तो भाई, इस प्रकार पृथ्वी की 4 परतें हुई, भूपटल, मेंटल और बाहरी और अंदरूनी कोर।
4: चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि पराठे के बहाने मानव पृथ्वी की परतों के बारे में भी जान गया।
1: पापा, ये तो आम की आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई।
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है।
2: लेकिन आज तो मैं पूरे दाम वसूल करूंगा।
3: दाम? क्या मतलब है मानव?
2: अरे मम्मी, मतलब यही कि मुझे पृथ्वी के विकास के बारे में कुछ और भी जानना है।
4: हाँ मानव, वैसे भी आज तो मैं भी घर पर ही हूँ।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पापा, क्या धरती आरंभ से ही इतनी सुंदर थी?
1: मानव, पृथ्वी तुझ जैसी जल्दबाज नहीं है।
2: अच्छा,
1: वो तो धीरे धीरे विकास के दौर से गुजरती हुई आज अपने इस स्वरूप में पहुंची है।
4: और बच्चों, जीवन के लिए आवश्यक माने गए हवा और पानी जैसे तत्व भी एक समय बाद ही धरती पर आए।
0: बिल्कुल सही पापा, क्या बात है।
4: थैंक यू।
0: और धरती के आरंभ में तो यहाँ वायुमंडल तक नहीं था।
2: अच्छा, तब तो उस समय हमारी पृथ्वी पर कहीं भी जीवन नहीं रहा होगा ना?
4: अब बेटा, जीवन तो तब होगा ना जब जीवन के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध हो।
2: है क्या मतलब पापा?
0: मतलब साफ है मानव, पृथ्वी के जन्म के समय ना तो यहाँ ऑक्सीजन थी और ना ही पानी।
4: हाँ।
1: मम्मी किचन से कोई आपको बुला रहा है, जाइए।
3: मैं तो तुम्हारी बातों में भूल ही गई थी कि मैंने गैस पर दाल पकने को रखी है। अब अच्छा बच्चों, मैं किचन में चली, तुम अपनी बातें जारी रखो।
4: चलो इसी बहाने हमें भी एक बात याद आ गई।
0: वो क्या पापा?
4: अब मानो हमारी पृथ्वी भी आरंभिक समय में प्रेशर कुकर की भांति

0: गर्म थी।
1: अच्छा?
0: हाँ, जिसमें से आरंभिक काल में गर्म और कुछ विषैली गैसें लगातार धरती के अंदर से बाहर निकल रही थी।
2: हाँ मानव, धरती के विकास के आरंभिक वर्षों में ज्वालामुखियों और अन्य प्राकृतिक क्रियाओं से धरती की अंदरूनी गर्मी बाहर आती रहती थी।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या उस समय भी ज्वालामुखी थे?
3: मानव, ज्वालामुखी तो पृथ्वी के जन्म के समय से ही अस्तित्व में है।
0: और बच्चों, इस प्रकार पृथ्वी के जन्म के कुछ वर्षों तक यहाँ जहरीली गैसों और ज्वालामुखियों की ही भरमार थी।
2: और आरंभिक समय में ज्वालामुखियों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रहों, चट्टानों और अन्य पदार्थों की बरसात के चलते धरती से गैसीय पदार्थ लगातार बाहर आते रहे।
0: वेरी गुड।
1: पापा, उन गैसीय पदार्थों में ऑक्सीजन भी तो रही होगी ना?
0: नहीं नहीं नहीं मानव, उस समय आरंभिक समय में पृथ्वी पर कहीं भी ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं थी।
1: अच्छा।
2: और आरंभिक समय में अत्यधिक गर्मी और सौर पवनों के कारण धरती का वायुमंडल भी स्थिर अवस्था में नहीं था। उस समय अधिकतर गैसें अंतरिक्ष में चली जाती थी।
1: तो फिर धरती पर वायुमंडल कैसे बना?
3: मानव, तुझे बहुत जल्दी रहती है, पूरी बात सुने बगैर ही बीच में काट देता है।
1: अच्छा बाबा, अब मैं पूरी बात सुनकर ही बोलूं।
2: हाँ माना, पूरी बात सुनकर ही बोल। धरती के ठंडा होने पर ही यहाँ वायुमंडल स्थिर हो पाया।
0: और बच्चों, इस क्रिया में बारिश की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी।
2: हाँ, पृथ्वी के ठंडा होने पर यहाँ उपस्थित गैसीय पदार्थों के संघनन से बादल बने और फिर ये बादल ठंडे होकर खूब बरसे।
0: और आरंभ में तो धरती की गर्मी के कारण कहीं कहीं बारिश का पानी शीघ्र ही वाष्प बनकर उड़ गया।
3: लेकिन मेरी टीचर ने बताया था कि धरती पर पहली बारिश कई वर्षों तक रही।
0: सही बोला है उसने।
1: फिर तो कई जगह बाढ़ आने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ होगा, है ना?
3: अरे बुद्धू, उस समय धरती पर ना तो कोई जीवन था और ना ही कोई संपत्ति।
0: हाँ बिल्कुल। अरे मानव, पृथ्वी पर तो जीवन बहुत बाद में आया। अरे अभी तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार हो रहा था और ये सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे चल रही थी।
1: पापा, चलो ये तो मान लिया कि धरती पर हुई पहली मूसलाधार बारिश से बाढ़ नहीं आई होगी, लेकिन उस बारिश से सारी नदियाँ और महासागर तो लबालब भर गए होंगे।
2: मानव, आज जिन महासागरों का अस्तित्व है उनका तो उस समय नामो निशान तक नहीं था।
1: तो क्या पृथ्वी के जन्म के समय यहाँ महासागर नहीं थे?
3: अरे मानव, जब तुझे पहले बताया कि पृथ्वी के आरंभिक काल में ये बहुत गर्म थी और यहाँ पानी भी नहीं था, तब उस समय महासागर की तो बात ही नहीं उठती।
2: पापा, आप कह ही दो, इतनी अच्छी बात करी दी सृष्टि ने तो।
0: जैसा पिता वैसी पुत्री।
3: पापा।
0: लेकिन मानव, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर वर्षों तक होने वाली पहली मूसलाधार बारिश से, जानते हो, धरती की सतह पर 6 मीटर ऊपर तक पानी भर गया था।
1: 6 मीटर?
0: हाँ।
1: एक तो वो दिन थे जब चारों ओर पानी ही पानी था, और एक ये दिन है जहाँ जाओ वहीं पानी की समस्या।
3: लेकिन तब पानी का अंधाधुंध दोहन करने वाला मानव कहाँ था?
1: क्या दीदी, आप तो हमेशा मेरी टांग खींचती रहती
2: है। मानव, नहीं नहीं सृष्टि तेरी नहीं, बल्कि वो तो इंसानों की बात कर रही थी।
0: और रही मानव टांग खींचने वाली बात, तो ये तो तू भी जानता है कि सृष्टि तुझे दिल से बहुत प्यार करती है। बेटा,
2: सृष्टि करती है ना?
1: हाँ, बोलो बोलो।
2: ये तो पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं।
0: तो मैं झूठ कब कहता हूँ?
2: मैंने कई बार देखा है पापा कि सृष्टि कितनी बार अपने हिस्से की मिठाई या चॉकलेट भी मानव को खाने को दे देती है।
1: ये तो है भैया, माँ प्रेम का सागर है तो मेरी सृष्टि दीदी भी नदी से कम नहीं है।
3: थैंक यू। भैया, हमारी गाड़ी भी तो महासागरों पर आकर अटक गई है।
0: तो बच्चों, ये तो तुम लोगों को पता लग ही गया कि धरती के जन्म के समय यहाँ न महासागर थे और न ही महाद्वीप।
2: महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण तो पृथ्वी के विकास के दौरान हुआ।
1: तो क्या महासागर और महाद्वीप साथ साथ बने?
3: भैया, मैंने पढ़ा था कि महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों की गति से हुआ है।
1: हैं? पृथ्वी की प्लेटें? ये क्या चीज है?
0: अरे मानव, ये वो चाय वाली प्लेटें नहीं है। मानव, पृथ्वी की बाहरी परत यानी भूपटल विभिन्न विशाल चट्टानों से मिलकर बनी है और धरती की इन विशाल चट्टानों को प्लेटें कहते हैं।
2: और सबसे पहले महान जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इन प्लेटों के बारे में प्लेट विवर्तनिकी नामक सिद्धांत में विस्तार से बताया।
0: वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
2: मेरे लिए भी कही दो आप।
0: लाइक फादर लाइक सन। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार धरती की सबसे बाहरी सतह करीब एक दर्जन छोटी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है।
1: लेकिन पापा, इन प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ?
2: मानव, इन प्लेटों का निर्माण पृथ्वी की हलचल के कारण धीरे धीरे होता रहा।
3: मतलब पृथ्वी की इन प्लेटों का निर्माण भी पृथ्वी की विकास प्रक्रिया का ही एक अंग था।
0: एग्जैक्टली। और ये प्लेटें अपने निर्माण के समय से ही गतिमान अवस्था में है।
1: अच्छा, तो इन प्लेटों की गति से ही आगे चलकर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा।
0: वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा।
2: महासागर और महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया को विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है।
0: और हाँ बच्चों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा न केवल महासागर और महाद्वीपों की बल्कि पर्वतों और खाइयों की निर्माण प्रक्रिया भी समझाई जा सकती है।
3: वो कैसे पापा?
0: वो ऐसे कि प्लेटों की आपसी टकराहट और इनमें संकुचन के कारण ही पर्वतों और खाड़ियों का निर्माण होता है।
2: जैसे करीब 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य हुई टकराहट और इसके परिणाम स्वरूप विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, कौन से पर्वत?
1: आप बताओ ना।
2: तुम बताओ ना।
1: भैया बताओ ना।
2: यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ।
1: पापा, क्या महाद्वीप भी इसी प्रकार बने थे?
0: हाँ बेटा, लेकिन महाद्वीपों के निर्माण में उनमें लगातार होने वाले फैलाव की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
2: महासागर और महाद्वीपों के फैलाव को महाद्वीपीय विसरण के सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है।
0: बिल्कुल ठीक। और बच्चों, महाद्वीपीय विसरण का सिद्धांत पृथ्वी के विकास के दौरान धीरे धीरे बनने वाले महासागर और महाद्वीपों के बारे में ही है।
2: इस सिद्धांत के अनुसार, पापा बता देना अगर गलत हो तो,
0: हाँ।
2: इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में धरती पर पांजिया नामक एक ही अति विशाल महाद्वीप था।
0: बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो।
2: थैंक यू पापा।
1: पांजिया महाद्वीप के बनने तक तो कोई महासागर भी अस्तित्व में आ चुका होगा ना?
0: हाँ मानव, उस काल में पेंथेलासा नामक अति विशाल महासागर था।
1: तो पापा, आज ही महासागर और महाद्वीप कहाँ गए?
2: मानव, ये महासागर और महाद्वीप गए तो कहीं नहीं, बस समय के साथ साथ इनका रूप बदलता रहा।
0: जैसे करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया महाद्वीप 2 हिस्सों में टूटकर एक दूसरे से दूर जाने लगा था।
2: और पेंजिया महाद्वीप के गोंडवाना लैंड और लॉरिशिस कहलाने वाले ये दो हिस्से टेथिस महासागर द्वारा एक दूसरे से अलग हो गए।
0: बिल्कुल।
3: भैया, क्या वर्तमान में भी इन हिस्सों को पहचाना जा सकता
2: हाँ,
3: है?
2: हाँ भाई, क्यों नहीं। तब का गोंडवाना लैंड आज के अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का ही पुराना रूप है।
1: ओह, तो क्या तब से लेके अब तक ये महाद्वीप लगातार गति कर रहे हैं?
0: मानव, गति तो कर रहे हैं, लेकिन महाद्वीपों की गति दर हमारे नाखूनों के बढ़ने जितनी है।
1: मतलब
0: कि करीब 1 इंच प्रति वर्ष।
3: तभी तो धरती लाखों करोड़ों वर्षों के बाद अपने इस रूप में पहुंची है।
0: बिल्कुल सही।
2: इस प्रकार धरती की भूपटल परत की प्लेटों के फैलाव से आज के महासागरों और महाद्वीपों की रचना हुई। समझ गई ना?
1: लेकिन भैया, आपने ये नहीं बताया कि धरती पर पहला जीव कब जन्मा था?
2: मानव, धरती पर पहला जीव करीब, पापा कुछ याद है?
0: अब 3.5 अरब वर्ष पहले।
2: हाँ, 3.5 अरब वर्ष पहले पानी में जन्मा था।
3: पानी में?
0: हाँ बेटे, उस समय धरती पर ओजोन परत का निर्माण तो हुआ नहीं था और शायद इसीलिए आरंभिक जीव अपने को सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों, तुम समझोगे नहीं शायद, तुमको अंग्रेजी में बताता हूँ, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता हुआ जल के अंदर विकसित हुआ।
1: अच्छा। लेकिन पापा, आरंभिक जीवन पानी में ही क्यों पनपा?
2: सोचो सोचो सोचो भाई मानव,
1: तुम ही सोचो। बता दीजिए ना भैया।
2: देखो ना, इतने इंटेलिजेंट है।
0: ठीक है, तुम बताओ। चलो,
2: अच्छा चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज गहरे पानी में अधिक प्रभावी नहीं होती, इसीलिए आरंभिक जीव पानी में ही उत्पन्न हुआ।
3: ओ, अच्छा।
1: पानी की ये विशिष्टता सुनकर मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ, ठीक है?
0: मानव, जरा मेरे लिए भी ठंडा पानी लेते आना।
2: और मेरे लिए भी। पापा, ठंडे पानी से याद आया कि हमारी धरती की विकास यात्रा के दौरान अनेक बार लाखों करोड़ों वर्ष तक यहाँ हिमयुग रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात तुमने बोली।
1: ये ना पानी।
0: ला भाई, तू पानी पिलाया। काम भी कभी कभी करता है।
1: हाँ,
2: हिमयुग।
1: तब तो कितना अच्छा मौसम होता होगा ना, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। हाँ। चाहे जितनी मर्जी खूब खाओ और कोई पैसा देने की कोई चिंता ही नहीं होती।
3: लेकिन मानव, पैसे की बात तो छोड़ो, तब तो धरती पर हमारा ही अस्तित्व नहीं था।
0: और होता भी तो हिमयुग के दौरान जैसे हजारों प्रजातियां विलुप्त हुई, उसी प्रकार इंसान भी इतनी अधिक ठंड का सामना नहीं कर पाने के कारण समाप्त हो गए होते।
2: हाँ मानव, इस प्रकार धरती से एक साथ हजारों प्रजातियों के समाप्त होने की घटना व्यापक विनाश या मास एक्सटिंक्शन कहलाती है, समझे?
1: तो क्या धरती पर व्यापक विनाश की घटनाएं भी होती रही हैं?
3: तो क्या समझता है मानव, धरती इतनी आसानी से सुंदर और जीवन को आश्रय देने वाली बनी है?
2: हा? हाँ मानव, धरती तो लाखों करोड़ों वर्ष की विकास यात्रा के बाद आज इस रूप में दिखाई दे रही है।
3: धरती पर उल्कापात, क्षुद्र ग्रहों की बमबारी जैसी आकाशीय घटनाओं और हिमयुग के दौरान होने वाली व्यापक विनाश की घटना से यहाँ व्यापक परिवर्तन होते रहे हैं।
2: और इस तरह अनेक परिवर्तनों को सहते हुए हमारी धरती आज जीवन को आश्रय दिए हुए है।
0: अरे बच्चों, हमने तो बातों ही बातों में पृथ्वी के जन्म से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक के सफर के बारे में जान लिया।
2: पापा, आपने कितना सब कुछ बताया।
0: मैंने नहीं, तुमने भी बताया।
1: नहीं बताया।
0: लेकिन क्या बात है कि अभी तक तुम्हारी मम्मी का खाना नहीं बना।
4: अरे, कौन कह रहा है खाना नहीं बना, बस अब तो खाने वालों का इंतजार है।
0: अरे भाई, हम भी तो तैयारी बैठे हैं।
1: हम भी।
3: आहा, खाने की खुशबू से तो मुंह में पानी आ जाता है सच्ची। अरे मानव, क्या हुआ?
1: कुछ नहीं मम्मी, वो गर्मा गर्म दाल दाल से ना मुंह जल गया मेरा।
3: मम्मी, मानव की जल्दी की आदत हमेशा इसी का नुकसान करती है।
0: अरे मानव, खाने में भी जल्दी। अभी तक तूने धरती के धीरे धीरे विकास के बारे में जानकर भी कुछ सीख नहीं लिया।
1: अच्छा पापा, अब से तो मैंने कान पकड़ लिए कि अब कभी भी जल्दी नहीं करूंगा मैं।
3: गुड
0: भाई, जिस तरह हमारी पृथ्वी धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ी और फिर लंबे समय के बाद यहाँ जीवन पनपा, उसी तरह अगर मानव भी जल्दबाजी की आदत छोड़ समझदारी से काम करता रहेगा तो धरती और मानव सदा मुस्कुराते रहेंगे।
5: आलेख एवं अनुसंधान नवनीत कुमार गुप्ता का था। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता राजीव दुबे और प्रस्तुति सहायक संदीप चिकारा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, लालिमा अनेजा, रिदिमा बग्गा, समीर ठुकराल और मेघा शर्मा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: महामारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महामारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महामारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महामारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, मैं रणवीर, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: से मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: ये मीनू है मेरे बेस्ट फ्रेंड और ये प्रशांत है मेरा। तेरा
3: चले
2: चले

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ
1: मैं छोड़ रहा।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोना। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: Beautiful track only on Suno Sharda 90.8 FM. So Sharth Manzoor, singers Palak Muchal and Muhammad Irfan. Music and lyrics by Sanjeev Chaturvedi. Label Tips Official. So let's listen to it only on Suno Sharda 90.8 FM. So

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है

0: दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर

0: मिलता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: She likes to drop it low, man.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: नाउ लिसन गर्ल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई ओनली वांट अ शर्ट।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, दिस इज शालमली फोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।